नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। यह प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

अभी आप समूह स्वर में देशगान सुन रहे थे। लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मेरा भजन। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पंडित सुधाकर शर्मा की रचना, आवाज अनूप जलोटा की है।

अनूप जलोटा के स्वर में आप सुन रहे थे पंडित सुधाकर शर्मा की ये रचना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नम्रता नरेंद्र चंचल की रचना, नरेंद्र चंचल के स्वर में।

नरेंद्र चंचल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे माता की भेंटें। और लीजिए कार्यक्रम के अंत में मनहर उदास की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये साईं भजन।

इसी साईं भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में आप सुनेंगे बाला प्रसाद यादव का बुंदेली काव्य पाठ। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 8:30 पर आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9 बजे कलाकार होंगे शरद अनुरागी, एक ही गायक। कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के गाए कुछ फिल्मी नगमे। सबरंग कार्यक्रम होगा 10:05 पर, जिसमें लोकराग में आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत। 10:30 पर हम लेकर आएंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

हमारी दोपहर की सभा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले होगी। इसमें आप सुनेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से, 1 बजे महिला कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रद्धा निगम की वार्ता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा परिवर्तन और संभावनाएं, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। दिन में 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आज हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे शाम 6 बजे। 6:30 पर लोकधारा के कलाकार होंगे मोहनलाल कुशवाहा। आज शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा आप सुनेंगे भेंटवार्ता में राकेश प्रजापति से बातचीत, विषय होगा स्वरोजगार से जुड़े और शासन की योजना के लाभार्थी बने। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत आकाशवाणी दिल्ली से। आज हम रिले करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: भैया रो, खेती किसानी को एक अंग है पशुपालन। पशु हमारे खेती के मुख्य सहयोगी तो हैं ही, संगे संगे हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह भी हैं। पालतू पशु जौन पंजभियन ने पाल रखे हैं, उनमें कछु पशु जौन गर्भ धारण कर लेते हैं, उस समय पे उनकी आहार और देखभाल कैसी भाव चाहिए, ये पे आज हम जानकारी दे रहे हैं। सामान्य रूप से एक गाय में गर्भकाल 280 दिन को, भैंस में 310 दिन को, भेड़ और बकरी में 150 दिन को होते हैं। अब सबसे पहली बात तो अपन जो जान लो कि जो कैसे पता चले कि पशु गर्भित है या नहीं। गर्भवती पशु के लक्षण ये प्रकार के होते हैं। एक तो पशु 21 दिन बाद पुनः गर्भ नहीं होता है। पशु को स्वभाव नर्म होने लगा थे और वो भारी होने लगा थे। पशु की स्तन ग्रंथियों को विकास होने लगा थे। और भी कई आधुनिक तरीके हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, हार्मोन एनालिसिस है, जे कछु ऐसे टेस्ट है जिनसे पता लगाओ जा सकते है। अब बात करें कि खान पान की व्यवस्था कैसी हो चाहिए, तो गर्भकाल के पांचवें महीने से सामान्य खुराक के अतिरिक्त देशी गाय को 1.25 किलोग्राम, संकर गाय या भैंस को 1.25 किलोग्राम अतिरिक्त दाना अपन को खिलाने हैं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को भरपेट चारा दाना खिलाओ चाहिए। सामान्यतः ये अवधि में पशु दूध भी देते हैं। अंतिम 2 महीना में दाना अपन को बढ़ा देने हैं। देशी गाय को लगभग 2 किलोग्राम, संकर गाय या भैंस को 4 किलोग्राम दाना दो चाहिए। मान लो 250 किलोग्राम की गाय के लाने गर्भकाल के अंतिम महीनों में 4 किलोग्राम भूसा और 2.5 किलोग्राम दाना की जरूरत पड़ा थे। यही प्रकार 450 किलोग्राम की संकर गाय या भैंस के लाने 5 किलोग्राम भूसा और 4.25 किलोग्राम दाना की जरूरत पड़ा थे। हरो चारो होबे पे भूसा कम करो जा सकते है। दलहनी फसलों को चारा सबसे अच्छा मानो गो है और भरपेट साफ पानी पीवे के लाने भी दव चाहिए। प्रसव के 50 से 60 दिन पहले से गाय या भैंस दूध निकालवो बंद कर दिए थे या स्वतः ही दूध निकालवो बंद हो जाते है, इको ड्राई पीरियड कहते हैं। और जो आराम पशु अपने शारीरिक क्षमताओं के विकास के लाने करत है, इसे अगले ब्यात में पशु ज्यादा दूध देते है। गर्मी को मौसम है तो ऐसे में गर्भित पशुओं को कैसे अपने पंजभिया आराम से रखे, इकेलाने पशु जहां बंधो भाव है उतरे आसपास पेड़ भाव चाहिए। पशु को नहलाएं भी, पीवे के लाने ठंडो पानी उचित मात्रा में दें या पंखा की भी व्यवस्था अपने पंजभिया कर सकते है। हरे चारे की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छो है। गर्मियों में रात के पशु ज्यादा खाते है, इस समय सुबह या शाम चराव भी चाहिए और अच्छी तरीके से बनोभव दाना भी खिलाने हैं। अब प्रसव के तुरंत बाद अपने पंजभियन का हल्के गुनगुने पानी में जीवाणु नाशक के घोल से उखो साफ करो चाहिए। और बछड़ा पशु से अलग पालने हैं तो तुरंत हटा लो चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करने आए तो पशु को बछड़ा को चाटन दो चाहिए। बछड़े के नथुने साफ कर दें। बछड़े को नाल साफ ब्लेड से 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़ के काट दें और कोनो एंटीसेप्टिक दवा जैसे टिंचर आयोडीन लगा दो चाहिए। बछड़े के जन्म के आधा घंटे में ही खीस पिला दो चाहिए, फिर 10-12 घंटा बाद पिलाने हैं और फिर सुबह और शाम। जो गर्भवती भेड़ बकरियां हैं उनमें अंतिम 6 सप्ताह में मुख्य रूप से बच्चे की बढ़वार होते तो इस समय खूब दलहनी चारा और 25% प्रोटीन वाला दाना अपन को खिलाने हैं। चाटवे के लाने खनिजों की ईट हमेशा अपने भेड़ या बकरी के पास रखें और प्रसव के कछु दिन पहले दाना घटा के चुनी बढ़ा दो चाहिए। तो ये प्रकार से अगर अपने पंजभिया ध्यान रखें तो उनके जो गर्भित पशु हैं वे गर्मी के दिनों में स्वस्थ बने रहें।
1: किसान भाई सुन रहे थे खेती किसानी। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

0: सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जीवन है तो परेशानियां और मुसीबतों का आना स्वाभाविक है, किसी न किसी रूप में इनका आगमन होता रहेगा। ऐसा होना असंभव है कि जीवन में परेशानियां ना आए, लेकिन इन परेशानियों और मुसीबतों से कैसे निपटा जाए, कैसे इन्हें सुलझाया जाए, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसी का नाम जीवन प्रबंधन है। परेशानियां दिखने में भयावह प्रतीत होती हैं, मनुष्य की चिंताएं बढ़ा देती हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से मनुष्य जागृत रहता है, होश में रहता है, संघर्ष और श्रम करता है और निरंतर उन्नति करता है। यदि जीवन में ये न हो तो मनुष्य की प्रगति रुक जाएगी, विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे, हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती, निरंतर अपना रूप बदलकर हमारे समक्ष रहती हैं। इस सच को दर्शाने वाला एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक बार किसी गांव में एक महात्मा पधारे, उनसे मिलने के लिए पूरा का पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। गांव के हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ऐसा क्या करें कि जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति मिल जाए और कोई भी काम अधूरा ना रहे। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, पहले तुम मुझे कुछ जिंदा मेंढक लाकर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनकर लोगों को बहुत अचरज हुआ, लेकिन महात्मा जी का ऐसा आदेश था, इसलिए सब लोग अति शीघ्रता से तालाब पर पहुंचे और कुछ मेंढक पकड़ कर लाए। अब महात्मा ने तराजू लाने को कहा, एक आदमी तराजू ले आया। इसके बाद महात्मा जी ने उन लोगों से मेंढकों को तौलकर उनका वजन बताने को कहा। लोगों ने मेंढकों को तौलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मेंढकों को पल्ले पर रखते, वैसे ही कभी एक मेंढक उछलकर भाग निकलता तो कभी दूसरा, फिर लोग उन्हें पकड़ कर लाते और तराजू पर रख देते। लेकिन उन मेंढकों को तराजू पर स्थिर पाना बेहद कठिन था। लोग दिन भर प्रयास करते रहे, अंततः हार कर उन्होंने महात्मा जी की ओर समाधान पाने की दृष्टि से देखा। महात्मा जी ने कहा, जैसे इतने मेंढकों को एक साथ तोड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार संसार में सब समस्याओं के होते निश्चिंत रहना संभव नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, इसीलिए उसे ठीक करने में ऊर्जा नष्ट करने के स्थान पर उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम आदि सद्गुणों को जीवन में धारण करना चाहिए और अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसी में जीवन की खुशी और संतुष्टि है। हम सभी के जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, भले ही सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी देर तक, लंबे समय तक ऐसा नहीं रहता, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता है और फिर छोटी बड़ी परेशानियां और समस्याएं सामने आ जाती हैं। शारीरिक आयाम में शरीर कभी स्वस्थ रहता है तो कभी अस्वस्थ, कभी शरीर में पीड़ा होती है, कभी चोट लगती है तो कभी शरीर हर तरह के दर्द से मुक्त दिखता है। भावनात्मक आयाम में व्यक्ति संबंधों के उतार चढ़ाव से गुजरता है, कभी रूठता है, कभी रूठे हुए को मनाता है, कभी नए रिश्तों को जोड़ता है, कभी जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ता है, कभी संबंधों को निभाने की पुरजोर कोशिश में लगा रहता है तो कभी संबंधों के दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे हटता है, कभी आनंद के क्षणों में गुजरता है तो कभी घुटन बेचैनी अनुभव करता है। जीवन के किसी भी आयाम को विकसित करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच अपूर्ण और अपरिपक्व होती है, इसे समझने जानने में समय लगता है। जीवन में मौजूद विभिन्न आयामों में जब भी संतुलन बिगड़ता है, दिक्कतें आती हैं। हमारी जिंदगी जटिल दिखती जरूर है, लेकिन उसे सरलता के साथ निभाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। उलझनों को सुलझाकर सरल और आसान तरीकों को अपनाकर हम इसका उल्टा करते हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों का कहना है कि शुरुआत छोटे छोटे पहलुओं और कार्यों को सुलझाने से करें, फिर बड़े पहलुओं और कार्यों को हाथ में लें। ऐसा करने से कार्य करना और आगे बढ़ना अधिक आसान होगा। एक जंगल में एक विधवा स्त्री अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ रहा करती थी। उसने अनेक कष्टों को सहते हुए भी अपने पुत्र का लालन पालन कुशलता से किया। उसका एक ही स्वप्न था कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाए। उसके परिश्रम के कारण उसका पुत्र अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौकीन बन गया और वो पढ़ने में कुशाग्र भी निकला। देखते देखते वो स्नातक हो गया और उसे पुस्तकालय में नौकरी भी मिल गई। अपना शेष समय वो समाज सेवा के कार्यों में लगाया करता था। माँ के दिए गुणों का ही परिणाम था कि वो अमेरिका के उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुआ। पत्रकारों द्वारा उसकी सफलता का राज पूछने पर उसने सारा श्रेय अपनी माँ को दिया और कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं उनके समर्पण के कारण ही हूं।
0: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।
2: साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी

0: इसमें मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
1: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक

0: न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर झाबुआ और डिंडौरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई खेल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 2,52,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 2,33,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, पृथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनेटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। बुंदेली सुगंध इस क्रम में लीजिए, आज हम आपको सुना रहे हैं बाला प्रसाद यादव का बुंदेली काव्य पाठ।

ओ मोरे संन्या सरकार कही मान लो। अगली कविता है वीरांगना झांसी की रानी। राजगद्दियां डगमगाए भय रक्त चक्ष राजाओं के, आजादी की चिंगारी सी प्रस्फुटित हुई अबलाओं के। आज वृद्ध भारत में देखो जवानी खिली हवाओं से, चढ़ा रंग आजादी का सब खबर मिली सब गांवों से। रानी से सब वेश बदल के बाई बनी मर्दानी, वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। कानपुर के नाना के संग हरदम खेली बाई, बरछी ढाल तलवार कटारी की सब शिक्षा पाई। इकलौती संतान पिता की और नहीं थे भाई, बचपन का था नाम मनु चार वर्ष में मर गई माई। नकली युद्ध व्यूह रचना का खेलती खेल भवानी, वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। हुई सयानी 13 वर्ष में झांसी भई सगाई, झांसी के गणेश मंदिर में ब्याह की बजी बधाई। मोरो पांत पिता से कन्या दान की रसम कराई, मनु से नाम बदल के बनी रानी लक्ष्मी बाई। जन्मासुत 16 वर्ष में मरण से शोक समानी, वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। पुत्र शोक में गंगाधर राव बीमार भये हैं, राजा की ही सम्मत से दामोदर गोद लये हैं। दामोदर का रखना ख्याल मेजर से बचन कहे हैं, राजा गए परलोक महल में हाहाकार भये हैं। अंग्रेजों की कूटनीत रानी को भई गलानी, वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। राजा गए परलोक सदाशिव भाई कजी ललचाया, अब झांसी है मेरी गोरों को ये भेद बताया। कच्ची दीवाल तोड़ ताड़ के महल में तुम घुस जाओ, रानी को तुम स्वर्ग पहुँचा के राजा हमें बनाओ। की गद्दारी सदाशिव ने और करी नादानी, वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। विधवा रानी भई डलहौजी राज हड़पने आया, सदाशिव की कूटनीत से निर्झंडा फहराया। झांसी लावारस का वारस डलहौजी बनकर आया, दिल्ली लखनऊ बिठू नागपुर बात बात में सब पाया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक को हैरानी, वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। वीर सिंधु पंजाब बंग सबके सब अपनाए,

0: बचाए एक मद्रास गोरों ने, उस पर कब्जा पाए। सबको हड़प हड़प कर बो कर फिर तुरत ही झांसी आए। फाटक वाले दूल्हा जू से कूटनीत को अपनाए। गुलाम गौस की तोपों से बोकर को भई हैरानी। वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। दूल्हे जू ने फाटक खोल गोरों से रिश्वत पाई। मोती मुंदर झलकारी फाटक पे जान गमाई। रानी की तलवार बोकर के हृदय समानी। वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। 50 कोस की दूरी तय कर रानी काल पी आई। यमुना तट पे द्वंद युद्ध गोरों ने मात खाई। रानी गई ग्वालियर सिंधिया वहां से भागे। जनरल स्मित पीछा है तो पीछे पीछे लागे। नाना और मुंदर सखियों ने मार काट की ठानी। वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। आया ह्यू रोज पीछे से सिंघनी घिरी भवानी। पर रानी की मार काट से गोरा सेना दहलानी। वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। अंत में गई सुरधाम 23 बरस में दुर्गा सी अवतारी। निझांसी का मान बढ़ाया वीरांगना थी नारी। सतपथ दिखा गई हम सबको स्वतंत्रता की देवी। देशभक्त का सबक सिखा गई वो स्वराज की सेवी। कहे बाल कब वीर शिरोमण झांसी की मर्दानी। वीरांगना बुंदेलखंड की सुन लो अमर कहानी। अगला शीर्षक है राम जन्म। राम जन्म भाव अवधपुरी में चैत सुदी की नौमी खो। उले फाने खुशी के मारे धन्य अवध के स्वामी खो। एक बार की बात बता रहे नृप के मन में गिलान भई। लड़का मोरे ये कौनन्या भीरत भीतर से जी घबराई। इंद्र सभा में बैठन गए थे मुकुट वहाँ पे छोड़ भाई। ख्याल भयो तब लौट के पहुँचे वो पोछा देखो जाई। एक निपुती दशरथ आवे सो अशुद्ध खो शुद्ध ही खो। ऊंचे खूने खुशी के मारे धन्य अवध के स्वामी खो। उते से आये अवधपुरी में उनखो सोच भयो भारी। गुरु कहे जा बात है साची हो ये निपुती नर नारी। बाके हाथ को पियो न पानी बतिया वेद की कह डारी। जग करो तो लड़का होवे मेटो ना निपुती को। उले फाने खुशी के मारे धन्य अवध के स्वामी खो। तुरत बुलाए संगीर सिखो जग करो तुम लड़कन को। निकरो हब जग से तुरत ही बाट दयो सब रानन खो। आधो कौशल्या खो दे दो आधो दे दो के कई खो। उन्ने आधो आधो करके दे दो भाग सुमित्रा खो। भय 9 महीना बेरा आई चैत महीना आवे खो। उले फाने खुशी के मारे धन्य अवध के स्वामी खो। चैत सुदी की नौमी आई अभिजित मुहूर्त पुख हतो। दोपहर में जन्मे राम ललाजू ज्यादा शीत न घाम हतो। राम प्रगट भय कौशल्या के हसी खुशी माहौल हतो। घर घर बजी बधाई भैया रात को नैया अतो पतो। के कई जन्मो भरत लाल खो सुमित्रा लखन शत्रुघ्न खो। उले फाने खुशी के मारे धन्य अवध के स्वामी खो। लड़का 4 भये दशरथ घर सब देवता देखने आए। बजे नगाड़े आसमान से राजा इंद्र ने बजवाए। नाव ने पूती मुटगा नृप को सो गुरु खो बुलवाए। गुरु ने नाम धरे लड़कन के हीरा मोती बटवाए। उले फाने खुशी के मारे धन्य अवध के स्वामी खो।
1: बुंदेली सुगंध के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बाला प्रसाद यादव से बुंदेली का वे पाठ। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अतिथि फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अनुराधा तथा कंचन को। गीतकार थे अनजान, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रू आत्मा की आवाज में राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत। संगीतकार हैं वनराज भाटिया और फिल्म का नाम है भूमिका।

भूमिका फिल्म में आप सुन रहे थे चंद्रू आत्मा की आवाज में राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत। संगीतकार थे वनराज भाटिया। फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में अनवर सागर का लिखा गीत। संगीतकार हैं नदीम श्रवण। फिल्म का नाम है हिसाब खून का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये गीत आप सुन रहे थे मारधाड़ फिल्म से। इसे लिखा था इंदीवर ने, संगीतकार थे राजेश रोशन और फिल्म का नाम, आवाजें थी नितिन मुकेश और साधना सरगम की। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है हमसे ना टकराना।

सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना, फिल्म का नाम था हमसे न टकराना। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक बार फिर से आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।

खतरों के खिलाड़ी फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा।

0: 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धन IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना

0: बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप समाचार यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Raghun Chopra. Narendra Modi infrastructure project around 30,000 crores at the meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote.

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था? इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव-गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपने निवास स्थान एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर

अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगई गुमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए, लेकिन भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने ली, उनके द्वारा बोया गया बीज आज है। सरकार और भारत दोनों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेब पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज कलाकार हैं शरद अनुरागी। इनकी आवाज में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बुंदेलखंड महिमा। संगतकार हैं ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर जब्बार खान।

0: बुंदेलखंड महिमा पर आधारित ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे शरद अनुरागी से। संगतकार थे ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर जब्बार खान।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए विदाई गीत। कलाकार हैं शरद अनुरागी।

0: ये विदाई गीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे शरद अनुरागी।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं और आज कलाकार हैं शरद अनुरागी। इनके साथ संगतकार हैं ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर जब्बार खान। इनकी आवाज में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं एक विवाह गारी।

लीजिए कार्यक्रम के अंत में एक और चेतावनी हम आपको सुना रहे हैं। कलाकार हैं शरद अनुरागी, संगतकार ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर जब्बार खान।

इसी चेतावनी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे शरद अनुरागी, संगतकार थे ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर जब्बार खान। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गायक। इसमें आज कलाकार हैं सुनिधि चौहान। आज सुनिधि चौहान के गाए कुछ फिल्मी नगमे हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ सुनिधि चौहान के बारे में हम कुछ चर्चाएं भी आपके साथ साझा करेंगे। तो लीजिए, यह है कार्यक्रम का पहला नगमा।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को हुआ था। वे एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं जो हिंदी गीतों को गाने के लिए लोकप्रिय हैं। इसके अलावा उन्होंने मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया और गुजराती फिल्मों में भी लगभग 2000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। तो लीजिए, इनकी इस खूबसूरत सी आवाज में कार्यक्रम का ये पहला नगमा आप तक।

श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी सुर, आवाज सुनिधि चौहान की, शब्द रचना निदा फाजली की और संगीतकार एम क्रीम। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सुनिधि चौहान ने अपने गायन की शुरुआत 4 वर्ष की आयु से की थी और एक स्थानीय टीवी मेजबान ने उनकी इस प्रतिभा को देखा। इसके बाद उन्हें सुप्रसिद्ध टेलीविजन गायन प्रतियोगिता मेरी आवाज सुनो से काफी प्रसिद्धि मिली और फिर उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में शस्त्र फिल्म से पदार्पण किया इस तरीके से। और उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आज तक लगातार जारी है। कार्यक्रम का अगला गीत खुशी फिल्म से हम आपको सुना रहे हैं, आवाज सुनिधि चौहान की।

श्रोताओं, खुशी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में। इसे लिखा था समीर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, जब सुनिधि चौहान की शुरुआत हुई पार्श्व गायन के क्षेत्र में, शुरुआत की जो फिल्में थीं उनमें जो गीत मिले वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन इसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है जब उन्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्म मिली मस्त। इसमें जो गीत उन्होंने गाया रुकी रुकी सी जिंदगी, वो एक सुपरहिट गाना साबित हुआ और उसके बाद फिर सफलताओं का दौर लगातार उनकी जिंदगी में चलता रहा। हम आपको बता दें कि इस दौरान अपनी पार्श्व गायकी में उन्होंने कुल 14 फिल्मफेयर पुरस्कारों का नामांकन हासिल किया।

आया, यानी कि उसके लिए वे नॉमिनेट हुई और उनमें से 3 फिल्मफेयर पुरस्कार उन्होंने जीते भी। इसके अलावा 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड, 2 आईफा अवार्ड और 1 जी सिने अवार्ड भी उन्होंने जीता। उनकी आवाज की खास बात यह है कि इनकी आवाज बड़ी ही वर्सेटाइल है, यानी कि किसी भी हीरोइन के लिए जब वो गाती हैं तो बिल्कुल उसी हीरोइन की आवाज में अपनी आवाज को ढाल लेती हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं, संदीप नाथ का लिखा हुआ, जिसे संगीत से सजाया है बापी और तुतुल ने। फिल्म का नाम है पैसा वसूल और आवाज सुनिधि चौहान की।

पैसा वसूल। इस फिल्म में आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान को, संदीप नाथ का लिखा गीत, बापी तुतुल का संगीत। श्रोताओं, सुनिधि चौहान का जन्म भारत के एक राजपूत परिवार में हुआ था और दिल्ली में 14 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैं, और वे श्रीराम भारती कला केंद्र में एक थिएटर कलाकार हैं। उनकी मां, जो एक गृहिणी हैं, उन्होंने ही सुनिधि चौहान को संगीत में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी एक छोटी बहन भी है। जैसा मैंने बताया था कि 4 साल की उम्र से सुनिधि चौहान ने प्रतियोगिताओं और स्थानीय समारोहों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके पिता के दोस्तों ने उन्हें गायन को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। उस दौरान वो लाइव शो करती थी और लोकप्रिय गानों की कैसेट और सीडी सुनकर नियमित रियाज करती थी। दिल्ली से उन्होंने ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद संगीत उद्योग में करियर बनाने के लिए स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं था। मैंने गायिका बनने के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया और मुझे इसका जरा भी पछतावा नहीं है। श्रोताओ, पढ़ाई लिखाई जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जब आपकी कैरियर की दिशा एक तय हो जाती है तो फिर अगर उस कैरियर में आप अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाती है और उसका कोई मलाल न तो उस शख्स को होता है और न ही समाज को। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने पड़े हुए हैं। हम क्रिकेट जगत की मशहूर हस्ती सचिन तेंदुलकर का नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी, लेकिन वे क्रिकेट के बेताज बादशाह और महान क्रिकेटर्स में शुमार हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, गायक हैं, जिन्होंने केवल अपने इसी जज्बे को और अपनी इसी प्रतिभा को निखारने के लिए भले ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आज वे इस मुकाम पर हैं कि उन्हें इस बात का कोई मलाल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अजय झिंगरान का लिखा गीत, सचिन गुप्ता का संगीत निर्देशन। आवाज सुनिधि चौहान की है और फिल्म का नाम है बोलो राम।

बोलो राम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में। श्रोताओं, जब कोई कलाकार या कोई खिलाड़ी या कोई महान शख्स अपने क्षेत्र में जाने का जज्बा पाल लेता है और उस क्षेत्र में बड़ी लगन से मेहनत करता है, तो सिर्फ उसी की मेहनत नहीं बल्कि उनके परिवार की मेहनत का भी उसके पीछे एक बहुत महत्व होता है। सुनिधि चौहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि जब अभिनेत्री तबस्सुम ने उन्हें गाते देखा तो अपने शो तबस्सुम हिट परेड में लाइव गाने का मौका दिया और इसके बाद परिवार को मुंबई में बसने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सुनिधि चौहान का परिचय कल्याण वीरजी शाह और आनंद वीरजी शाह से कराया, यानी कि कल्याण जी आनंद जी से। मुलाकात के बाद कल्याण जी ने उनका नाम निधि से बदलकर सुनिधि कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक शुभ नाम है, यानी कि सुनिधि चौहान का पहले जो वास्तविक नाम था वो निधि चौहान था। अब जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्हें मुंबई ले आए। शुरुआत में परिवार को शहर में जीवन यापन करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि अपनी बेटी के हुनर को वो जानते थे और उन्हें पता था कि उनकी बेटी एक न एक दिन बड़ा मुकाम छूने वाली है, यही वजह थी कि माता पिता ने भी सरवाइव किया और कुर्बानियां दी। इसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक कल्याण जी के अकादमी में काम किया और उनके लिटिल वंडर्स मंडली में सुनिधि मुख्य गायिका बन गई और उसके बाद फिर कई शो के प्रस्ताव मिले। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाएं और फिर फिल्मों के लिए गाना उनका शुरू हुआ और लगातार फिर लव आजकल के गीत, चोर बाजारी के लिए उन्हें 12वां फिल्म फेयर नामांकन मिला, रब ने बना दी जोड़ी, गुजारिश, हार्ट बीट, उड़ी और ढेरों फिल्मों में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए। कार्यक्रम के समापन का समय हो रहा है। नॉकआउट फिल्म का गाना हम आपको सुना रहे हैं जिसे लिखा है पंछी जालवनी ने और संगीत दिया है गौरव डीजी ने।

नॉकआउट फिल्म के इसी गीत के साथ ही एक ही गायक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के गाए कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नेकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकासखंड में आयोजित जनकल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नेकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गयी। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकास खंड की ग्राम

पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 5 स्व सहायता समूहों को 25 लाख रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉ. राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बरचर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी का
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। इसमें लोकराग के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं हरियाणवी लोकगीत। कलाकार हैं गुलाब सिंह।

कार्यक्रम में अभी आप ये सुन रहे थे पनघट गीत गुलाब सिंह से। इसी क्रम में लीजिए अब सुनिए एक और लोकगीत, कलाकार हैं गुलाब सिंह।

अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत जिसे गाया था गुलाब सिंह ने। इन्हीं की आवाज में लीजिए, अब हम आपको सुना रहे हैं एक सावन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लीजिए, कार्यक्रम के अंत में एक और लोकगीत हम आपको सुना रहे हैं। कलाकार हैं गुलाब सिंह।

इसी लोकगीत के साथ ही सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसमें लोकराग के अंतर्गत आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत। कलाकार थे गुलाब सिंह। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओ, यह था कार्यक्रम का पहला गीत मेरे महबूब फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज थी, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीतकार नौशाद। कार्यक्रम में अब हम आपको लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को लिखा है हजरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है असली नकली। इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश इस प्रकार है। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा ने पत्र भेजा है और ये अगला पत्र हम तक आया है देवरी भाटापारा से। लिखने वाले हैं गन्नू लाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। मेल हम तक पहुंच रहे हैं और ये मेल है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। इसके अलावा सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी ने पद्मा टॉकीज नेपानगर से ये हम तक मेल भेजा है। इसके अलावा राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार डूडी ने भी हम तक अपना मेल पहुंचाया है। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और कंचन सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से हम तक मेल भेज रहे हैं। इसके अलावा बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉ बबलू अंसारी, सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने भी हम तक मेल भेजा है। मोहम्मद वकार मंसूरी का ये मेल हम तक आया हुआ है और इनके परिवार वालों ने ये मेल हम तक भेजा हुआ है। बहुत सारे लोग गीत सुनना चाहते हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव और एस के पप्पी ने भी मेल हम तक पहुंचाया है। ग्राम लोहेड़ी महोबा यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और इसके अलावा चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक का भी नाम इसी मेल के साथ शामिल है। ये अगला मेल हम तक आया है जिसको पहुंचाने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड से हम तक ये भेजा हुआ है। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखे लाल वर्मा हम तक मेल भेज रहे हैं। साथ ही साथ दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने भी मेल हम तक पहुंचाया है। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर असली नकली फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी की शब्द रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म का नाम था असली नकली। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक और खूबसूरत सा नगमा सुनवाने जा रहे हैं, जिसे अपने शब्दों से संवारा है योगेश ने और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है रजनीगंधा। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश, आदर्शनगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, इस्लामपुर असनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई चैताली और प्रीति चांदरे। ये पत्र हम तक आया है सुंदरखेड़ राजमाता नगर से, लिखने वाले हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका अनूपुर, ऋषिका और रॉबिन, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा धनेश्वरी वर्मा और सारा गांव चटौदा से सुजान वर्मा, सोद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। मेल हम तक पहुंचाए हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। इसके अलावा ये हम तक मेल आया है ग्राम पजौनिया जालौन से, लिखने वाले हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। अगला मेल है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, लिखने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम ये हम तक पत्र भी भेज चुके हैं जसपुर उत्तराखंड से और मेल भी उन्होंने हम तक पहुंचाया हुआ है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का मेल हम तक आया है।

ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हम तक मेल भेज रहे हैं और अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन, और जो पहले नाम मैंने बोले थे वो नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी से उन्होंने हम तक ये मेल पहुंचाया था। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का मेल भी हम तक मिला हुआ है। अगला मेल है संजय ढिंगिया, नमन और अपार का, बागपत उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका ने हम तक ये मेल भेजा है, पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। ये मेल है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जय और दर्शन भाई। और साथ ही साथ अगला मेल हम तक पहुंचा है ग्राम पोस्ट तालगांव, तहसील भांडेर, जिला दतिया से। लिखने वाले हैं मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार, शिवम कुमार, और उनके माता पिता भी गीत सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल पूरे परिवार के लिए कार्यक्रम सुनवाया जाता है, सभी लोग मिलकर सुनते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में रजनीगंधा फिल्म का यह खूबसूरत सा नगमा।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से अपने रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला के साथ। और कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको किशोर कुमार की आवाज में सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें अपनी आवाज मिलाई है आशा भोसले ने। योगेश का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत और फिल्म का नाम है बातों बातों में। पसंद करने वाले ममना जिला हमीरपुर से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु, महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजी, राहुल कुमार, विशाल, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी, महिमा और नीतू वैद्य, भरत सिंह ने लिखा है अशोकनगर महोबा से हम तक पत्र, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेद और मीका विरक, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, रेयांश और कुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार और दीपक कुमार। मेल हम तक पहुंचे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो के। इसके अलावा गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहिन हसन, नाजिया और इब्राहिम ने हम तक मेल भेजा है। कुछ मेल हम तक दो दो बार भी पहुंच रहे हैं और ये मैंने पहले भी आप सभी से अनुरोध किया था कि कृपया एक ही कार्यक्रम में दो दो बार मेल न पहुंचाएं। जमुनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का मेल हम तक पहुंचा है। इसके अलावा कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज द्वारा भी हम तक मेल पहुंचाया गया है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला, विशाल सोपान और नारायण इंगले ने भी मेल पहुंचाया है। मुरादाबाद दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का मेल हम तक पहुंचा है। अगला मेल हम पढ़ने जा रहे हैं, यह है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा का। साथ ही साथ शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान और उत्तम जमताड़े ने हिंगोली महाराष्ट्र से हम तक मेल पहुंचाया है। अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता और गुड़िया वेदा सिंह ने भी हम तक मेल पहुंचाया है, लेकिन ये लिखा नहीं है कि आखिरकार कहां से। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू का मेल है। इसके अलावा अन्य जो हमारे श्रोता मित्र हैं उनमें ये मेल हम तक दोबारा पहुंचा है, जिसमें कई सारे श्रोता मित्र शामिल हैं। पनवाड़ी जिला महोबा से देवीदीन अहिरवार, सुनीता, दिनेश कुमार, कपिल और पूजा वर्मा ने हम तक मेल पहुंचाया है। रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी ने ग्राम ममना हमीरपुर से हम तक मेल पहुंचाया है। साथ ही साथ अगला मेल हम तक आया है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का, रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर, राजस्थान से। जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और उनके परिवार वालों ने भी हम तक मेल पहुंचाया है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी मेल पहुंचाया है। तो लीजिए आप सभी की पसंद में किशोर और आशा भोसले की आवाज में बातों बातों में फिल्म का ये गाना।

और श्रोताओं, कार्यक्रम समाप्त करने का समय नजदीक आ रहा है, तो आखिरी गाने के लिए जो फरमाइशें हम तक हम पढ़ पा रहे हैं उसमें ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री को गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का ये मेल हम तक आया है। इसके अलावा ग्राम पोस्ट गौना कुसमार थाना सोजना मेहरोनी से कैलाश नारायण, नामदेव, दीपक कुमार और द्रौपदी का मेल हम तक पहुंचा है। भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा दत्तरंगी से हम तक मेल भेज रहे हैं। इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश ने हम तक मेल भेजा है। यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह, अंशराज और समस्त परिवार खकल, विकासखंड नंदीगांव, जिला जालौन से हम तक ये मेल आया हुआ है। साथ ही साथ ये मेल हम तक दोबारा आ चुका है और बहुत सारे मित्र, जैसा कि मैंने अनुरोध किया था कि दो दो बार भेज रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, ये मेल हम तक आया है संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जिसमें अनिल बी घोड़के ने हम तक ये मेल पहुंचाया हुआ है। अशोक सिंह का मेल हम तक आया है, जिसमें अशोक सिंह, सुनीता और अंकिता सिंह ने फरमाइश की है। ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय ने हम तक कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये मेल पहुंचाया हुआ है। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान का मेल भी हम तक पहुंचा है। इसके अलावा बहुत सारे मेल लगातार हमें मिलते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय और उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। तो लीजिए, आप सभी जो श्रोता मित्र जिन्होंने हम तक मेल भेजे हैं, उन सभी की पसंद पर इंकार फिल्म का ये गाना उषा मंगेशकर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा।

0: सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे ये फोन इन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। सादर वंदन और अभिवादन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर आपसे बातचीत का सिलसिला। दोस्तों, जिस तरह बदलते मौसम के साथ हमारा रहन सहन बदलता है, उससे पहले हम अपना खान पान बदलते हैं। गर्मी में क्या खाना है या पीना चाहिए, सर्दियों में क्या और आने वाला मौसम यानी बारिश में खान पान कैसा हो, इस बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी कम होती है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सेवन समय समय पर करना लाभदायी होता है, और यदि उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन गलत समय पर कर लेते हैं तो उसका गलत असर हमारे स्वास्थ्य पर होने लगता है। जैसे केला, ककड़ी, संतरा, दही, चॉकलेट, चावल इत्यादि। आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय कौन सा होता है। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: कौन दीदी बोल रही हैं, कौन मैडम जी बोल रही हैं?
1: जी हम बोल रहे हैं प्रियंका, आपकी अपनी रेडियो संगीनी कार्यक्रम है आज बात आपकी गीत हमारे। अब आप अपना परिचय दे दीजिए।
2: कहते हैं कि चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, और शरीर में दर्द कष्ट हो तो हर बात बुरी लगती है, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर फोन लग जाए तो सब बात हरी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है।
1: जी जी, तो आज
2: हरी लगती है। जी प्रियंका मैडम जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
1: जी जी,
2: और मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका मजनू दीवाना चांद मोहम्मद खान श्रोता बोल रहा हूँ। आप
1: जी बिल्कुल हम पहचान गए, लेकिन आपका परिचय हमारे जो अन्य श्रोता होते हैं उन्हें देना जरूरी होता है, इसलिए हम आपसे नाम पूछते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं
2: पूछते हैं। मैडम जी आपसे बात एक बार और हुई थी, काफी दिन हो गए।
1: जी बिल्कुल, दो तीन बार हो चुकी है।
2: आज इत्तेफाक भगवान की कृपा हो गई, परवरदिगार की दुआ हो गई कि आप ही से बात हुई है मैडम जी।
1: अच्छा, अब आज हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। जैसे हम कभी कई बार केला रात में खा लेते हैं।

0: नुकसान करता है, तो इस बारे में आपके पास जो भी जानकारी है हमें और हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: अब मेरा मतलब यही कहने का है मैडम जी कि जो खान पीन की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और खाने पीने का सामान होता है उसे समय समय पर ही खाना चाहिए। सभी श्रोताओं से कहना है, जितने ऑल वर्ल्ड के श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे दिन में दोपहरी में तो दाल चावल का ही सेवन करना चाहिए और ज्यादा खटाई अटाई इस्तेमाल दोपहरी में ही करो, रात में ना करना चाहिए क्योंकि रात में सर्दी जुकाम का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है और चावल बहुत नुकसानदायक होता है, ये भी मैं बता दूं। और खटाई तो रात में नाइट में बहुत ही नुकसानदायक है मैडम जी, और दिन में कितना भी खाते रहो कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि धूप कड़ी होती है और समय सही रहता है, और रात में थोड़ी ठंड महसूस होने लगती है तो ये ठंडी वाले जो आइटम होते हैं। और ये बता दूं कि ठंडे कुछ आइटम खाने के बाद पानी भी पीना नुकसानदायक होता है मैडम जी।
0: अच्छा
1: जी जी। और गुड़ जो है तो गुड़ का सेवन तो 12 महीने अगर करते रहो मैडम जी तो बहुत ही सेहत के लिए लाभकारी होता है। और इस समय तो आम का पन्ना और प्याज खूब खाइए तो गर्मी से निजात मिलेगी। और जामुन इस्तेमाल करिए, तो जामुन खाने से मैं बता दूं मैडम जी सबसे बड़ा लाभ, अगर जामुन बंद के आप एक महीने खा लें तो समझ लो ये शुगर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, और आंखों की जोत नहीं जा सकती। ये आंवला और जामुन में बहुत जबरदस्त गुण है
0: जी। ये बात तो आपने बहुत ही कारगर बताई है कि जामुन और आंवला जो है ये आपको शुगर फ्री रखता है,
1: ये बहुत फायदेमंद है मैडम। जैसे आंवला तो अभी नहीं मिलता, समय के मुताबिक मिलता है, लेकिन अगर जामुन अभी मिल रही है तो जामुन बंद करके अगर कोई भी भाई बहन जितने श्रोता बंधु सुनते हैं तो सुबह के टाइम चाहे खरीद के खाएं चाहे झोल, हमारे यहाँ तो जामुन का अंबार लगा हुआ है तो मैं भोपाल भेज दूं मैडम जी, रोज सुबह टाइम मतलब यानी कि कुछ नाश्ता पत्ती ना करके इसे जामुन से ही सेवन करिए, तो मेरा दावा है कि कोई बीमारी कोई मर्ज नहीं आ सकती है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं फिर कर सकता।
0: जी, तो आपका जो कहने का हम अगर निष्कर्ष निकाले तो ये हो सकता है कि जो मौसमी फल होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए और अधिक से अधिक सुबह के समय करना चाहिए।
1: हाँ, सुबह के टाइम सही रहता है मैडम, ये फायदेमंद रहता है, और फिर तो दिन भर खाते रहो तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि खाना खाने के बाद
0: जी
1: कोई और चीज का सेवन करो तो वो नुकसानदायक ही होता है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद जी, और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए और इतनी लाभप्रद जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को देते रहिए। शुक्रिया,
1: नमस्कार जी।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, गुड
0: आपकी आवाज काफी कम आ रही है। हाँ
1: जी मैम, अभी आ रही मैम
0: अभी आ रही है, बिल्कुल बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी
1: जी।
0: बता दिए।
1: मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। थैंक
0: राय बरेली से पिंकी जी, स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: यू मैम। हम बहुत मैम आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। आप बताइए आप कैसी हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं से जब इतनी अच्छी बात होती है तो हम और अच्छे हो जाते हैं। पिंकी जी
1: जी और
0: आज
1: मैम हम लोग आपका इंतजार से, और जब आपसे मुलाकात हो जाती है ना तो मैम बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी, और खुशी मिलती है तो आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता होगा, है ना?
1: जी मैम, क्योंकि मैम रेडियो सुनने का हमें बहुत शौक है, और जब
0: जी जी
1: रेडियो पर अपनी आवाज सुनाई देती है ना तो मैम इसकी खुशी और भी ज्यादा
0: अलग
1: हो
0: ही
1: जाती है।
0: होती है, बिल्कुल। तो ये फोन इन कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो यही है कि श्रोता अपनी आवाज भी सुन सकते हैं।
1: जी, और
0: जी
1: मैम सभी श्रोताओं की भी आवाज सुनने को मिलती है, और देश विदेश से मतलब श्रोता जुड़ते हैं
0: जी
1: और अपने क्षेत्र के बारे में विशेषताएं बताते हैं, तो मैम बहुत अच्छा लगता है और
0: जी जी
1: सब
0: जी
1: चीजें जानने को मिलती हैं रेडियो के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगता
0: जी
1: है।
0: पिंकी जी, अब हम आपसे आज के विषय के बारे में बात करें।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, आज हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। इस विषय में आप क्या जानती है, बताइए।
1: जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमें मैम ज्यादा करके तो मैम दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए, ना कि
0: लेकिन
1: कोल्ड ड्रिंक
0: हाँ,
1: का और चाय का,
0: बिल्कुल
1: ऐसी गर्म चीजों का मतलब खान पान नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और
0: लेकिन
1: मैम योगा भी
0: हम ये
1: करना
0: जानना
1: चाहिए
0: चाहते हैं।
1: क्योंकि अभी हम लोगों ने मतलब योगा दिवस भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय, तो मैम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख।
0: लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पिंकी जी कि जैसे आपने कहा कि दही का सेवन करना चाहिए, छाछ मठा वगैरह, तो इसका एक विशेष कोई समय आप बताएंगे कि कब करना चाहिए, या दही का सेवन गर्मियों में कब ज्यादा लाभकारी होता है?
1: मैम जैसे हम सुबह खाना खाते हैं तो उसके साथ ही खाएं, और
0: जी
1: मैम जैसे करके अगर दही छाछ को हम खाते हैं तो मैम ये भी हमारे सेहत मतलब लाभदायक होता है। जी,
0: अच्छा, तो चलिए पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने
1: और
0: हमें ये
1: मैम
0: जानकारी दी।
1: गाँव में तो जब चीनी मिक्स करके मतलब जैसे इसका घोल बना के पीते हैं खाते हैं ना, तो ऐसे में मतलब ज्यादा पसंद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: जी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम और जगह का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: हाँ दीदी, मैं भागचंद साहू जी बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर गंजवासदा से।
0: जी साहू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल।
0: और आज हम जानना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। अब उसमें से कोई भी खाद्य पदार्थ आप चुन सकते हैं कि जिसके बारे में आप जानकारी दें कि इसका सेवन कब करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात।
1: तो दीदी भी तो देखो, खाद्य पदार्थ चीजों में तो देखो बहुत चीजें आती हैं, केला भी है, सेब भी है, ठीक है जी, ऐसी चीजें सभी आती हैं।
0: जी, तो
1: जैसा
0: हम
1: देखो
0: जानना
1: मैं रुचि
0: चाहते हैं कि
1: रखता।
0: इनका सेवन का समय जो है वो कौन सा समय ज्यादा लाभकारी है?
1: दीदी वो तो देखो समय के अनुसार सब फल आते हैं और समय के अनुसार खाना चाहिए वो।
0: जैसे
1: बिल्कुल, समय के बिना समय के तो खाना बिल्कुल सही नहीं है।
0: जैसे आप बताइए कि कौन सा फल या कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो बिना समय नहीं खाना चाहिए?
1: दीदी वो तो समय से खाओगे तो सही रहेगा। जैसे अभी आम का मौसम है, आम आ रहे हैं तो आम खा सकते हैं, केला
0: कब खा
1: आ
0: सकते हैं
1: रहा
0: ये
1: है। नहीं
0: बताइए, सुबह ज्यादा लाभकारी होता है या दोपहर में या शाम में?
1: नहीं सुबह सुबह में लाभकारी होता है, केला खाओगे बहुत लाभकारी होता है,
0: और
1: और सेब खा लो वो भी लाभकारी है, अंगूर वगैरह भी आप आहार में ले लो सुबह के टाइम।
0: सुबह के समय। जी,
1: बिल्कुल, ये जो सब चीजें पौष्टिक आहार है, बहुत
0: पौष्टिक आहार
1: फायदेमंद
0: है
1: चीजें ये।
0: और सुबह के समय अगर हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ये चार गुना लाभ देता है। ठीक
1: अरे
0: है
1: बिल्कुल, क्यों नहीं देगा दीदी,
0: जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल देगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी, आपने हमें फोन किया और ये जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को बताई। नमस्कार।
1: बिल्कुल दीदी, नमस्ते।

0: कब खाना चाहिए?
1: देखो मौसमी जो रहते हैं ना फल सब्जी वगैरह रहती हैं, तो उसका सेवन करना चाहिए
0: जी।
1: और ये खाना में सलाद अलाद वगैरह ये जरूरी है लेना।
0: ये कब लेना चाहिए सलाद, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप? सुबह लेना चाहिए या नाश्ते के समय लेना चाहिए, लंच के समय लेना चाहिए या शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताएंगे?
1: सुबह ही लेना चाहिए।
0: ठीक है, तो आपका कहना है कि सलाद सुबह खाना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें हमें शाम को खाने से अवॉइड करना चाहिए या सुबह ले लेना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो बताइए हमें।
1: शाम के समय क्या है कि एक तो समय का विशेष ध्यान रखें कि समय से पहले ही खाना खा लें। माने ऐसा नहीं कि रात की 10 बजे या 11-12 बजे खा रहे हैं अपन, ये गलत है
0: जी, जी।
1: और शाम के समय ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी से जल्दी
0: पचने में आसान हो।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: बताइए अपना परिचय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेलीखेड़ा जिला तमोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा
0: जी ओम प्रकाश जी, स्वागत है आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो बताइए खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय क्या है और आप कौन सा खाद्य पदार्थ चुनकर हमें बताएंगे कि इसे

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे फोन इन कार्यक्रम है।
1: जरूर रखा गया है इस बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में
0: जी बिल्कुल, हम आपसे विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: विषय जानना चाहते हैं हम
0: जी। विषय हमारा है कि जो हम कई बार केला, संतरा या अंगूर या अन्य कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है, जैसे दही हो गया और चॉकलेट वगैरह है, आइसक्रीम है, तो इनको हमें कब खाना हमारे सेहत के लिए बेहतर होता है ये बताइए, या इससे अलग और कोई खाद्य पदार्थ जो आप जानते हो तो उसके बारे में बताइए हमें कि कब उसका सेवन सही होता है।
1: ये इन सब चीजों का सेवन तो जब हम ये व्रत उपवास वगैरह रहते हैं और जो है इनको जब अपनी ज्यादा इच्छा हो तो तभी खाना, तो ज्यादा अपने को भूख वगैरह लेंगे तो।
0: अच्छा, तो अगर हम ये कहें कि हमारा केले खाने का मन रात में बहुत हो रहा है तो क्या खा लेना चाहिए हमें?
1: तो ये इन फलों का उपयोग हम ज्यादा व्रत और उपवास में ही ज्यादा करते हैं।
0: जी जी,
1: और वो जो है,
0: लेकिन समय कौन सा सही रहता है? जैसे केला सुबह ज्यादा लाभदायक होता है, वो आपका वजन बढ़ाता है, तो इस तरह और कोई खाद्य पदार्थ की बात हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: हाँ, जैसे जैसे
2: हे राजू,

0: बहुत सारे लोगों तक पहुंचे कि सही समय पर सही चीज खाना ही लाभ देता है। कई बार बच्चे जिद करते हैं, केला रात में मांगते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि केला रात को नुकसान करता है, दही नुकसान करता है या संतरा खा लिया। तो यही चीज हम जानना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं तक भी ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि सही समय पर सही सेवन किसी वस्तु का लाभ देता है। तो कुछ उदाहरण आप हमें बता दीजिए जल्दी से।
1: मैं अपना उदाहरण मैं स्वयं का दे दूं। सुबह से मैम जी मैं तो कुनकुना पानी पी लेता हूं। और रही बात खाने की, तो दिन भर दुकान पे रहता हूं, रह रहकर मैं अपनी स्थिति बता दूं, जलेबियां खाता रहता हूं, लेकिन मैं खाना एक टाइम ही खाता हूं।
0: अच्छा
1: हाँ। और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, पानी को स्वच्छता के माध्यम से पीता हूँ। तो सभी से निवेदन है कि पानी का सेवन करें, लेकिन उसे समझबूझ के करें कि ये हमारे पीने योग्य है कि नहीं।
0: जी जी जी,
1: अधिकतर बीमारियां पानी से होती हैं। बात खाने की हुई है तो लापरवाही सभी बरतते हैं, तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग यदि घर में हैं,
0: हाँ।
1: नहीं तो हमें जानकारी रखते हुए खाद्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए जीवन में, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है।
0: जी जी, क्योंकि आज खान पान इतना शुद्ध नहीं है।
1: और मैम जी देखिए, अब शुद्धता की बात हुई तो मैं तो किसानी क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पर खाद पाउडर जो होता है फसल में ज्यादा से ज्यादा सींचा जा रहा है, पूरे भारत में सींचा जा रहा है। मूंग अभी आई है, बीज होता है, उसे इसी के माध्यम से उर्वरक शक्तियों के माध्यम से किया जाता है, और अंततः उसे एक ऐसे खाद सामग्री सींची जाती है कि वो अंततः वो फसल सूख जाती है और उसे हार्वेस्टर के माध्यम से काट लिया जाता है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें जहर ही जहर सींचा जाता है। तो हम कहाँ तक सतर्कता बरते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सभी लोग सतर्क रहें ताकि हमारा जीवन अच्छे से रहे।
0: जी जी, शुक्रिया कमलेश जी, आपने बहुत जानकारी अच्छी दी है कि जो खाए वो शुद्ध खाए, प्योर खाए और अच्छे से अच्छा खाए।
1: और अंत में यही कहूंगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा
0: मन। धन्यवाद। कभी

0: हेलो।
1: हाँ जी, ग्राम बालोदा लखा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश है, कन्हैयालाल प्रजापति
0: जी। कन्हैयालाल जी कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आनंद मंगल है।
0: बढ़िया आनंद मंगल चल रहा है।
1: हाँ, अभी पानी का इंतजार में बैठे हैं सभी, खेती है हमारे पास तो।
0: हाँ,
1: अगर सोयाबीन लगाएंगे, अगर पानी अच्छा गिर गया तो सोयाबीन लगाएंगे, उसके इंतजार में बैठे हैं।
0: तो ये बताइए कि आप जो ये सोयाबीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे खान पान में किस तरह से असर करती है सोयाबीन?
1: ये तो विटामिन बहुत बढ़िया, इसके अंदर तो इसका तेल वगैरह भी निकलता है और कई।
0: तो सोयाबीन किस तरह से खाना चाहिए, आप ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ, सोयाबीन इसको है ना, वो गला करके खाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है कि विटामिन सबसे अधिक इसमें रहता है क्या?
0: अच्छा, और ये कब खाना चाहिए, सुबह को या रात में?
1: सुबह में, सुबह में, सुबह।
0: अच्छा, तो इसे क्या रात में गला कर रखते हैं फिर सुबह खाना चाहिए, या आप 2 घंटे पहले गला दें और खा ले, ऐसा कोई?
1: दो तीन घंटे पहले गला करके फिर बाद में खाना शुरू कर दो, विटामिन एक नंबर रहता है।
0: अच्छा, और उसका पानी वो जो निकलता है गलाने के बाद में, वो पानी किस उपयोग में लाया जा सकता है?
1: हाँ, वो पानी भी ले सकते हो क्या, पीने के लिए भी ले सकते हो, वो भी अच्छा पानी।
0: चलिए कन्हैयालाल जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो अब फसल आने वाली है तो उसको लेकर भी जो हमारे श्रोता हैं तो वो थोड़े से जागरूक हो जाएंगे कि सोयाबीन हमारे लिए फायदेकारक है और उससे विटामिन मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और सुनते रहिए कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और इसके साथ ही और दूसरे कार्यक्रम भी। नमस्कार।

0: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपका। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
0: हाँ जी मैडम
1: जी, नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम?
0: मंदसौर से बोल रहा हूँ, मनोहर लाल मेहर।
1: जी स्वागत है मनोहर लाल जी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ मैम।
1: बढ़िया है। बारिश की क्या तैयारियाँ चल रही है आपके यहाँ?
0: बारिश तो अभी हुई नहीं है, बारिश की संभावना है, पर गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: गर्मी हो रही है और संभावना है, तो बारिश में ये बताइए कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें उसे सुबह खाना चाहिए या रात में खाना चाहिए, दिन में, ऐसी कौन सी जानकारी है आपके पास?
0: अभी तो हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बारिश हुई नहीं है। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि हल्का फुल्का भोजन ले, ये तेल की जो बाजार की जो चीजें हैं ये खाना बंद कर दे, और अपने जो घर पे जो जैसे कोई दलिया बनाओ, जैसे हल्की फुल्की कोई चीजें बनाओ तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: लेकिन ये है कि दलिया तो हम शाम को खाए ताकि पाचन भी आसान हो और हल्का फुल्का भी रहता है, लेकिन
0: हाँ, और सवेरे टाइम क्या है, वो मूंग की दाल बना लो और रोटी, सादी रोटी खाओ
1: हर रोज।
0: हर रोज मैम।
1: हाँ, तो जैसे आपने बताया कि मूंग की दाल, तो हमारे अभी एक पहले कॉलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मूंग किस तरह से फसल में उगाए जाते हैं और उसका किस तरह से फर्टिलाइज करके और हम तक पहुंचता है। तो ये जो मूंग की दाल होती है, या इसके अलावा और कौन सी पौष्टिक चीजें होती है जो जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहते हो?
0: पालक वगैरह, मेथी की सब्जी, ये ऐसे कुछ सब्जी ऐसी है जो लौकी की सब्जी है, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समझो और समझा।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमने जानना चाहा कि किसी भी वस्तु के सेवन का सही समय क्या होना चाहिए। शोध के अनुसार अक्सर ये होता है कि बच्चे जब चॉकलेट मांगते हैं हम उन्हें कभी भी दे देते हैं, लेकिन रात में चॉकलेट खाना इसमें कैफीन बहुत होता है जिसके कारण वो नुकसान करता है। सोने से पहले टमाटर खाना भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। संतरा और अन्य खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन पूरी तरह खाली पेट इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज से 30 जून तक समापन किया जा रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3,62,000 से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल से प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 33,92,000 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गजनों के बैंक खातों में मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का अंतरण कर रहे हैं। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों में लिखकर भेजते हैं। सुनिए गीत हेमलता के स्वर में। फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बेलई जिला सागर से। श्रोता है लक्ष्मण रायकवार, श्रीमती विनीता रायकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत रायकवार और ऋषि रायकवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है राहुल नगर यवतमाल से। श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। अगले श्रोता राजावत परिवार हैं, मध्य प्रदेश से। मनमोहन रजावत, मधु रजावत, राशि, रशिद, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरिंगी छत्तीसगढ़ से हैं। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुबेदा से। इस गीत को सुरों से सजाया कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार A.R. रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश में आई है औरंगाबाद से, श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिवहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा, आफिया, रऊफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का सातवां भाग।

0: धारावाहिक में अब तक आपने जाना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ आया, जहां की राजा आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रय दिया था। भुवन मोहिनी ने जब देखा कि उसके आश्रय दाता की बेटी राजकुमारी चंद्रहासिनी राजकुमार के प्रति आसक्त है, तो वो अपने प्रेम का बलिदान करने को तत्पर हो गई। उसने चंद्रहासिनी को विश्वास दिलाया कि वो उसका विवाह राजकुमार से अवश्य करवाएगी। राजकुमार ने संदेशवाहक से भुवन मोहिनी को अपने आवास पर बुलवाया, परंतु हट करके राजकुमारी चंद्रहासिनी भी आ गई। भुवन मोहिनी ने राजकुमार से चंद्रहासिनी को अपनाने का आग्रह किया, परंतु विजय श्रवा ने साफ साफ कह दिया कि भुवन मोहिनी का जो स्थान उसके हृदय में है उसे कोई नहीं ले सकता। इसके बावजूद भी चंद्रहासिनी ने इस सच को स्वीकार कर लिया। तीनों ने मिलकर मेले का भ्रमण किया, जहां राजकुमार के माता पिता मिले। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। अब आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी में।
1: सम्राट द्युम्नसेन की जय। सम्राट द्युम्नसेन की जय। सम्राट द्युम्नसेन की जय।
2: समस्त खंड राज्यों के राजा महाराजाओं को भारत सम्राट द्युम्नसेन का यथा योग्य अभिवादन। इंद्रप्रस्थ मेले के इस पुनीत अवसर पर हम सब अति गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ये प्रश्न है भारत पर ह्यूणों का आसन्न आक्रमण। हम देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर हूण जाति के बाहरी लोग लगातार छुटपुट आक्रमण कर रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि हूण बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और हमारी पुण्य पावन धरती को छीनना चाहते हैं। इस हेतु आप सबकी अंतःइच्छा को हम जानना चाहते हैं।

0: चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
1: हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए।
0: हमारी भी यही इच्छा है, पर आप लोग जानते हैं कि हमारी आयु अब बहुत हो चली है। ऐसी स्थिति में क्या आप सब खंड राज्य के अधिपतिगण इस सभा में उपस्थित हमारे युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व को स्वीकार करने की सहमति देते हैं?
2: इसके पहले कि आप सब किसी निर्णय पर पहुंचे, मैं इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन युवराज विजय श्रवा के विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
3: अवश्य अवश्य अवश्य,
2: क्योंकि आप में से कई नरेशों ने युवराज विजय श्रवा की वीरता के बारे में नहीं सुना होगा। क्या आपकी अनुमति है?
3: अनुमति है, अनुमति है।
2: माननीय सभासदों, कुमार विजय श्रवा ने अतीत में हुए मगध और सूत प्रदेशों की लड़ाइयों में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। उन्होंने जिस चतुराई से इन युद्धों का संचालन किया था, वैसा भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। युद्ध में किस तरह साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर शत्रु को चारों खाने चित करना चाहिए, युवराज को भली भांति जानकारी है। उन्होंने यह कला किसी और से नहीं, अपने यशस्वी पिता सम्राट दुमत सेन से ही सीखी है। युवराज विजय श्रवा ने मगध के युद्ध में जिस प्रकार मोर्चेबंदी की, वह अविस्मरणीय है। विपक्षी सेना को पता चला कि युवराज विजय श्रवा की सेना घबरा गई है और पीछे हट रही है, तो वो पीछा करने में लग गई। जैसे ही युवराज ने देखा इस पीछा करने की कार्यवाही में शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई है, तो उन्होंने अपने सुनियोजित एक ही प्रबल आक्रमण से शत्रु सेना को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। मित्रों, हमें हूणों के साथ ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण युद्ध की नीति अपनानी होगी। मत भूलिए कि हूण अत्यंत ही बर्बर और आक्रामक जाति है, जिसका इस धरती पर प्रवेश मात्र हमारी दासता को आमंत्रण नहीं होगा, अभी तो हमारी संस्कृति का सर्वनाश होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
3: हमें युवराज विजय श्रवा का ही नेतृत्व चाहिए।
0: तो अब हम यही निर्णय मानते हैं कि युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व में समस्त खंड राज्यों की सेनाएं हूणों से युद्ध के लिए तैयार की जाएं। युवराज का क्या कहना है?
4: सभी महामहिम नरेशों का मैं अभिवादन करता हूं। आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं भावी युद्ध आप सब वयोवृद्धों के आशीर्वाद और आदेशों से लड़ूंगा। हमें राष्ट्र के युवकों में वीरता की ज्योति जगानी पड़ेगी। उनके भालों को लोहित टीकों द्वारा सुसज्जित कर रणभूमि में भेजना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सेना के साहस और शौर्य को बहुगुणित करते हुए शत्रु दल को शीघ्र ही पराजित कर भारत की विजय पताका फहराऊंगा। कृपया मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।
5: कितनी अद्भुत बात है।
6: कौन सी बात?
5: जिस विजय श्रवा को हम अकर्मण्य और विलासी समझते थे, उसने तो युवाओं में उत्साह भर दिया।
7: राजमाता, आज राजकुमार जी ने राष्ट्र में नए प्राणों का संचार कर दिया।
8: अरे ये सब मेरी भावी पुत्रवधु चंद्रहासिनी के सौभाग्य का परिणाम है। मेरे पुत्र के जीवन में चंद्रहासिनी का प्रवेश जैसे ही हुआ, वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी समझने लगा। क्यों चंद्रहासिनी?
7: ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस योग्य मान रही हैं।
4: आपने मुझे बुलाया माँ।
8: आओ पुत्र, हमें तुम पर गर्व है।
4: माँ,

0: एक दिन आपको आशंका हुई थी कि कहीं मैं विलासी बनकर स्वाभिमानिनी माता का दूध कलंकित न करूं। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपकी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करके रहूंगा। इसीलिए मां, उसी समय मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा।
1: पुत्र?
0: हां मां, ये मेरा स्पष्ट निर्णय है।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाल। अपनी इस वृद्धा माता की भूल को क्षमा करो। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने ही हृदय के टुकड़े को कठोर और अपराधयुक्त वाकवाणों से पींद कर उसका बहुत अपमान और तिरस्कार किया था, किंतु तुम्हारी निश्चल तपस्वी मूर्ति को देखकर मेरा हृदय स्वयं अपने कहे वाकवाणों के लिए पश्चाताप कर रहा है। इसके अतिरिक्त मात्र सेवी पुत्र को जो निरर्थक कष्ट सहना पड़ा, वो भी मेरे मातृत्व के विपरीत कार्य हुआ है। इन समस्त त्रुटियों को करते हुए भी चंद्रहासिनी को मैंने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लिया है पुत्र, और महारानी कुमुद वल्लभा को मैंने और महाराज आदित्य सेन को सम्राट ने वचन दान भी कर डाला है। क्या मातृ पितृ सेवी पुत्र से अवज्ञा की आशा की जा सकती है? क्या सम्राट और मेरे वचनों का कोई मूल्य नहीं है मेरे पुत्र? क्या विवाह की स्वीकृति देने का अधिकार कभी भी तुमसे छीना था हमने? यदि नहीं, तो आज की राजपुत्रियों में चंद्रहासिनी सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी है, जो अक्षय यौवना, अनिंद्य सुंदरी, पारंगत विदुषी और विनयपूर्ण आज्ञाकारिणी है। उसका समग्र जीवन चरित्र और सौंदर्य निष्कलंक है। फिर भला ऐसी राजपुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाने का लोभ मैं कैसे संवरण करूं? तुम ही बताओ।
0: मां, मैं अपनी ओर से जो कुछ चंद्रहासिनी को दे सकता था भुवन मोहिनी को साक्षी बनाकर दे दिया है। इससे अधिक आज मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं विवाह आदि के बंधनों में जितना ही उलझूंगा, राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उतना ही जटिल होता जाएगा। इसलिए मां, महान दायित्वों के सामने एक व्यक्ति के विवाह का मंगल कार्य तुच्छ है, चाहे साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो। आप जानती हैं मां, अनासक्ति की तुलना में सर्वदा आसक्ति ही पराजित हुई है। फिर भी आप ये सब कह रही हैं? एक ओर मैं राष्ट्र की सेवा को तत्पर हो रहा हूं, और दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रहासिनी से विमुख भी हो रहा हूं। समग्रता में क्या उचित है, क्या अनुचित, नहीं जानता। परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि कल तक मैं शून्य जीवन व्यतीत कर रहा था, अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु आज तो मैं स्वयं के होने का भावार्थ समझ गया हूं। आज मेरे लिए जीवन का एक भी क्षण मूल्यहीन नहीं है। वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए है। मेरे माता पिता ने मेरी उपेक्षा की, सुनसान पहाड़ियों में, जंगलों में निरुद्देश भटकता रहा मैं। परंतु अब उन्हीं माता पिता के हृदय से स्नेह, सौभाग्य और आशीर्वाद की त्रिवेणी निकल रही है मेरे लिए। मुझे जो चाहिए था मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरण्यक?
2: हाँ मित्र।
0: धारा नगरी को प्रस्थान करने की तैयारी करो, और हां, किसी भृत्य को कहो कि शीघ्र जाकर भुवन मोहिनी को मेरा संदेश सुनाए कि वो भी मेरे ही साथ मेरे रथ में बैठकर मातृभूमि की यात्रा करने की शुभ आयोजना में संलग्न हो। उसके भृत्य और वैयक्तिक संपत्ति आदि जो भी हो, वो अपने रथ में लेकर शीघ्र ही पर्णकुटी में आ जाए, और हां, उससे निश्चित रूप से स्मरण करा दिया जाए कि एक दिन उसके निर्वासन की घड़ी में मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी कि उसे बुलाने के लिए

0: मैं ही अपना रथ लेकर आऊंगा। वो बेला आज उपस्थित है।
1: जो आज्ञा युवराज, मैं अभी जाता हूं।
2: क्या सोच रही है हमारी भावी पुत्रवधू?
3: राजकुमार ने भुवन मोहिनी को बुलवाया है।
2: अच्छा,
3: अपने साथ धारा नगरी ले जाने के लिए वो तैयारी भी कर रही है।
2: कोई बात नहीं पुत्री, इसमें तुम परेशान न हो, मैं अपने पुत्र को अच्छी तरह जानती हूँ।
3: माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी जाऊँ।
2: तुम्हारी भी इच्छा है, परंतु पुत्री हम लोग तो धारा नगरी बाद में पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हमें सम्राट के साथ संपूर्ण देश की परिक्रमा करनी है। तब तक तुम अकेली प्रासाद में कैसे रुकोगी? देखो पुत्री, कुछ दिन और धैर्य रखो, उसके बाद शीघ्र ही तुम हमारी पुत्रवधू बनकर राज प्रासाद की स्वामिनी बनोगी। फिर भी यदि हमारे युवराज तुम्हें अतिथि के रूप में अपने साथ ले जा सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य ले लेना।
3: धन्यवाद माँ। मेरी माता ने भी मुझे आज्ञा दे दी, परंतु अब मुझे फिर से भुवन मोहिनी की शरण जाना पड़ेगा। ये जानती हुई भी कि वो मेरे प्रिय के अंतर मन में देवी की भांति स्थापित है। ठीक है, जाती हूँ भुवन मोहिनी के पास।
4: अरे राजकुमारी जी, आइए, बस मेरा सामान रथ पर रखा ही जा चुका है। राजकुमारी, मेरे गले लगिए, मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी आपके पिता महाराज की, उन्होंने मुझे आश्रय दिया था। अरे आप अनमनी मत होइए, मैं जब तक आपको राजकुमार के हृदय का हार नहीं बनवा दूंगी शांत ना होंगी। राजकुमार आपको अवश्य स्वीकार करेंगे।
3: सखी, हृदय में जिस प्रेमाग्नि की लपटें धधक उठी हैं, वे क्षणिक वियोग की अश्रुधाराओं से बुझने ना पाए, बस यही तुमसे प्रार्थना है। न जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि राजकुमार के ओझल होते ही मेरे जीवन की समग्र प्रसन्नता लूट जाने वाली है। मेरे नेत्र आंसुओं को नहीं संभाल सकते, मैं असहाय अपने जीवन को बचा न सकूंगी। बताओ बताओ सखी, मैं क्या करूं जिससे वो मेरी दृष्टि से ओझल ना हो?
4: राजकुमारी जी, संयोग वियोग मानव जीवन का अटल धर्म है, इसे सहन करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर सहन करो या रोकर। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय और संयोग वियोग का सम्मिश्रण ही तो मानव जीवन का लेखा जोखा है।
3: सखी, मैं मानव जीवन की परिभाषा नहीं जानती, न यही जान सकी हूँ कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है और ये जीवन में क्यों प्राप्त हुआ।
4: किंतु इसे तो जानना पड़ेगा राजकुमारी।
3: अवश्य प्रयास करूंगी, किंतु मात्र राजकुमार विजय स्रवा के माध्यम से। अकेली न मैं कुछ कर सकती हूँ न समझ सकती हूँ। विजय स्रवा के बिना मैं उस सरिता का शून्य अंक या गर्व ही बनी रहूंगी जिसका गंभीर और जीवनप्रद सरस रस पूर्णत्व की स्थिति के पूर्व ही सूख चुका है और जो शून्य से अधिक कुछ भी नहीं।
4: राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ धारा नगरी चल सकेंगी? युवराज से मैं आज्ञा ले लूंगी इसके लिए, निश्चिंत रहिए।
3: धन्यवाद सखी, तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ।
4: हाँ हाँ।

0: सारथी, राजकुमार के वापस लौटने की सूचना पाकर न जाने कितनी भीड़ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची है। भुवन मोहिनी भी कब की आ चुकी हैं, परंतु उन्हें अवकाश ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे भुवन मोहिनी नहीं, राजकुमारी भी आई हैं।
0: क्या कहते हो?
1: मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा।
0: नहीं, मैं भी जाकर युवराज को बताता हूँ।
1: हाँ हाँ जाओ।
0: मित्र मित्र मित्र
2: क्या है अरण्यक?
0: देव, भुवन मोहिनी पर्ण कुटी में आ चुकी हैं, किंतु उनके साथ साथ राजकुमारी चंद्रहासिनी भी पधारी हैं।
2: अरे तो ऐसा करो,

0: कि तुम उन दोनों की सेवा में प्रस्तुत रहो, और जैसे ही अवकाश मिलेगा मैं उन लोगों के बीच आ जाऊंगा और हम सब एक साथ भोजन करेंगे।
1: बहुत अच्छा मित्र, अभी जाता हूँ।
0: बस बस, देखिए अब अधिक समय मैं नहीं दे पाऊंगा, यात्रा में विलंब होगा। आप सब जोश बनाए रखिए और आगामी युद्ध की तैयारी करिए।
2: युवराज विजय शर्मा की
3: जय!
2: युवराज विजय शर्मा की
3: जय!
2: युवराज विजय शर्मा की
3: जय!
0: भवन मोहिनी, आज की घड़ी कितनी शुभ है। आज हमारे स्वतंत्र पुनर्मिलन का अति मूल्यवान क्षण उपस्थित हुआ है, और संयोग से उसमें भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रहासिनी भी उपस्थित हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूं।
4: देव चिरायु हूं, मेरे समस्त सुख वैभव के क्षण तभी उपस्थित हो जाते हैं जब देव के पावन दर्शन में मुझ जैसी नारी के तुच्छ जीवन क्षण व्यतीत होते हैं। फिर भी देव के श्रीमुख से पुरस्कृत किए जाने का विशेष आदर पाकर मैं कृतार्थ हूँ।
0: आज तो राजकुमारी का नाम सार्थक ज्ञात होता है।
5: हाय, बलिहारी जाओ राजकुमार, कम से कम इतना तो कहा।
0: ओ रूप की जादूगरनी, अनमोल मोल का सौदा करके तुमने मुझे प्रेम की एकांत साधना से विचलित कर दिया है। मेरी पलकों में नाचकर तुमने अंतर के प्रेम रहस्य को पहचान लिया है। तुम बरजोरी से वहां प्रवेश कर चुकी हो जहां भुवन मोहिनी चिरकाल से प्रतिष्ठित रहती आई है। तुमने एक अपराजिता सौंदर्यमयी नारी को भी अपने मायावी रूप के बंधन में जकड़कर उसके रूपोन्मोहन से स्खलित कर दिया है। तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपने पलकों में रूप की मदिरा उड़ेल कर मुझे मद विह्वल करते जा रहे हैं। मैं इनका जितना ही चक्षुपान करता हूं मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है।
4: देव, मेरा पुरस्कार मुझे मिलेगा?
0: हाँ हाँ, तुम मांगो तो।
4: एक बार आप और सोच लें, मैं जो कुछ मांगूंगी वो आपको देना ही होगा।
0: बस वो वस्तु मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान न हो। मैं अगणित भुवन मोहनियों और चंद्रहासिनियों को अकेला प्यार करूंगा। चिर अद्वैत आज द्वैत की भावना से मूर्तिमान है, प्रेम वासना का प्रतिनिधि है।
4: मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अनंग का रंग तपस्वी विजय श्रवा की पवित्र नाड़ियों में मोहित मूर्छना का विष घोलता जा रहा है।
0: देर मत करो प्रिय, आज मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी देकर अपने दानी होने का परिचय दूंगा। तुमने देर की है, एक के स्थान पर दो पुरस्कार मांगो।
4: देव, दूसरा पुरस्कार तो भविष्य के लिए सुरक्षित रखती हूँ। परंतु पहला पुरस्कार यही मांग रही हूँ कि राजकुमारी चंद्रहासिनी हम लोगों से क्षण भर के लिए भी विलग ना हो।
0: क्या? मैंने वचन दिया, परंतु ध्यान रहे, यदि भविष्य में विजयश्रवा तुमसे दूर होता दिखाई पड़े तो उस स्थिति में संपूर्ण दोष का दायित्व तुम्हारा होगा। जानती हो ना, मानव जीवन पतन का भी इतिहास रहा है।
4: राजकुमारी, मैंने अपनी प्रियतम सौगात आपको अर्पित कर दी है। हो सके तो इस सागर से बिंदु मात्र मुझे प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय देना, किंतु वो कभी बदला चुकाने की दृष्टि से ना हो। राजकुमारी, आपने मुझसे जब जो कुछ चाहा है वो सब मैंने आपको अर्पित किया है। अब आप मेरी छोटी बहन बनी है ना, किंतु हमारा ये संबंध बहुत एकांत का है। समाज और संसार की दृष्टि में आप एक महामहिमामयी और मैं मात्र एक तुच्छ नारी हूँ।
5: बहन, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मेरी वाणी में शब्द नहीं है। तुमने बारंबार मेरे जीवन को आत्म प्रवंचना और आत्म प्रताड़ना के गर्त से ऊपर उठाकर सुख शांति और समृद्धि के स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया है।

0: दीव स्वयं साक्षी हैं। तुम अपने महान दैवी संपत्ति द्वारा अपने जीवन को सजाकर एक अशुभ नारी से अब देवी बन चुकी हो। मैं तो शक्ति, अहंकार, अहमन्यता और सत्ता की गोद में पलकर साधारण मानवी हूँ, भले ही मेरा बाह्य स्वरूप महानता का परिचायक हो।
1: मेरी बहन,
2: ये नारी जिसने अपना अंतर और वाह मेरे लिए बिखेर रखा है, मैं उसे कब से समेटकर अपने आप में छिपा लेना चाहता रहा हूं, किंतु मैं उसका बिखरना रोक नहीं पाता, मैं उसे अपने आप में समेट नहीं पाता।
1: देखा राजकुमार, मेरी छोटी बहन की महानता को, स्वयं इतनी विशाल हृदय होकर मेरा गुणगान करने चली है।
2: भुवन मोहिनी, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं सका। जब भी मैं अपनी समझ की परिधि में तुम्हें घेर लेता हूं, तभी मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का ना जाने कितना भाग अभी भी मैं स्पर्श नहीं कर सका। समझ की परिधि के भीतर लाना तो दूर की बात है।
1: ये भी देव की ही कला है। मुझे आदर देकर वो राजकुमारी को ही प्यार जता रहे हैं। अच्छा, अब देव का आदेश हो तो अरण्यक सबको भोजन कराएं।
2: अवश्य प्रिय, भोजनादि करके सब लोग शीघ्र ही सो जाएं और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धारा नगरी को निकल पड़े।

0: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में 30 जून तक जलगंगा वर्धन अभियान चलाया जा रहा है। 19 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और हमारे ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला सभा।

छोटे से छोटे अवसर का समय पर उपयोग किया जाए तो बड़े अवसर खुद सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस सुविचार के साथ ही आज का महिला सभा कार्यक्रम लेकर आपके साथ मैं हूं दमयंती वाजपेयी। स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, एक समय था जब महिलाओं की पहचान केवल घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक ही सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज की महिला अपने सपनों को पंख देकर हर क्षेत्र में सफलता की नई कहानियां लिख रही है। अब वो केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र प्रगति की एक महत्वपूर्ण शक्ति भी है। तकनीकी विकास और डिजिटल क्रांति ने तो हम महिलाओं के लिए सफलता के नए द्वार ही खोल दिए हैं। फ्रीलांसिंग और रोजगार की बढ़ती संभावनाओं ने हमें क्षमता के अनुसार काम करने, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और समाज में एक सशक्त पहचान बनाने का अवसर दिया है। बहनों, फ्रीलांसिंग यानी ऐसी कार्यप्रणाली जिसमें व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी का स्थायी कर्मचारी बने बिना ही स्वतंत्र रूप से बहुत से ग्राहकों या संगठनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो जो बहनें पारिवारिक जिम्मेदारियों या फिर किसी और भी कारणवश नियमित नौकरी नहीं कर पाती हैं, उनके लिए फ्रीलांसिंग एक वरदान के रूप में समझा जाता है उनके लिए। और इसके माध्यम से महिलाएं घर बैठे ही अपनी सुविधानुसार काम कर सकती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में इवेंट प्लानिंग, डेकोरेशन, सोशल मीडिया प्रमोशन, क्लाइंट मैनेजमेंट के साथ ही और भी कई आयोजनों के माध्यम से समन्वय का कार्य क्षेत्र के रूप में स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। इससे आपको अपनी रचनात्मक दिखाने का अवसर मिलेगा और परिवार और काम के बीच संतुलन भी आप बनाए रख सकती हैं। बहनों, रोजगार की दृष्टि से भी इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेडिंग प्लानर और कॉरपोरेट इवेंट विशेषज्ञ जैसे पदों पर भी आप काम कर सकती हैं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता हर महिला के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो जो बहनें पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए फ्रीलांसिंग एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जो लचीलापन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि बहनें इन अवसरों को पहचानें, अपने कौशल को विकसित करें और आत्मविश्वास के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं और फिर हमारे साथ गुनगुनाएं कुछ इस तरह।

0: गुजारिश। अभी हमने इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शैल हुड्डा की आवाज में सुना। तुराज की शब्द रचना को संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने। बहनों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल शरीर की गतिविधियों का संयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति, संस्कृति की धड़कन और परंपराओं की जीवंत विरासत है। नृत्य की हर मुद्रा, हर भाव और हर ताल में भारतीय सभ्यता का गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक चेतना और कलात्मक संवेदनाएं समाहित हैं। लेकिन जब आधुनिकता और वैश्वीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई देता है, तब भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। तो इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए सुनते हैं वार्ता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा, परिवर्तन और संभावनाएं। वार्ताकार हैं श्रद्धा निगम।
1: भारतीय संस्कृति में नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, दार्शनिक दृष्टि और सौंदर्य बोध का समन्वित स्वरूप है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आधारशिला प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में निहित है, जिसकी रचना आचार्य भरत मुनि द्वारा की गई मानी जाती है। इस ग्रंथ में नाट्य को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, अर्थात ऐसा वेद जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सुलभ हो। नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत, भाव विभाव, अनुभाव की संरचना, लय ताल की वैज्ञानिक व्यवस्था तथा आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय की अवधारणा भारतीय नृत्य को गहन दार्शनिक आधार का प्रदान करती है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय नृत्य मात्र देह की गति नहीं, बल्कि भाव और चेतना की अभिव्यक्ति है। भारत में मान्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, मोहिनी अट्टम तथा सत्रिया उल्लेखनीय हैं। इन सभी की अपनी विशिष्ट तकनीकी संरचना, वेशभूषा, संगीत पद्धति और प्रस्तुति विधान है, किंतु इनके मूल में शास्त्रीय सिद्धांतों की एक रूपता विद्यमान है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आत्मा उसकी गुरु शिष्य परंपरा में निहित है। यह केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और साधना का क्रम है। नृत्य यहाँ अभ्यास मात्र नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और आत्म अनुभूति की प्रक्रिया है। वर्षों की नियमित साधना से कलाकार अपने भीतर लय और संतुलन का विकास करता है। वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों ने कला को अभूतपूर्व विस्तार प्रदान किया है। आज छोटे नगरों

का कलाकार भी विश्व मंच तक पहुंच सकता है। यह परिवर्तन निस्संदेह सकारात्मक है, किंतु इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। प्रथम चुनौती शास्त्रीय और लोक प्रियता के मध्य संतुलन की है। समकालीन दर्शक त्वरित, संक्षिप्त और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक प्रस्तुति चाहता है। परिणाम स्वरूप कई बार शास्त्रीय नृत्य की जटिल संरचनाएं और दीर्घ साधना आधारित प्रस्तुति को अत्यधिक संक्षिप्त या सरलीकृत कर दिया जाता है। उससे उसकी गहराई और आध्यात्मिकता पर प्रभाव पड़ सकता है। द्वितीय चुनौती कला के व्यवसायीकरण से संबंधित है। मंचों और प्रतियोगिताओं की बढ़ती संख्या ने अवसर अवश्य दिए हैं, परंतु साथ ही कला को बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का दबाव भी बढ़ा है। जब प्रस्तुति का उद्देश्य साधना से अधिक आकर्षण हो जाता है, तब मूल तत्वों की उपेक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तृतीय और अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती शुद्धता बनाम फ्यूजन की प्रवृत्ति से जुड़ी है। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि नई पीढ़ी पारंपरिक साहित्य, पदावली और शास्त्रीय काव्य संरचना से क्रमशः दूर होती जा रही है। गहन अध्ययन और व्याकरणिक अनुशासन के स्थान पर त्वरित प्रस्तुति को प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में शास्त्रीय नृत्य में फ्यूजन की प्रवृत्ति तीव्रता से विकसित हुई है। पाश्चात्य और भारतीय शैलियों के मिश्रण से नई प्रस्तुतियां तैयार की जा रही हैं। प्रयोग और नवाचार कला की स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु जब प्रयोग शास्त्रीय व्याकरण की उपेक्षा करने लगे, तब यह शुद्धता प्रभावित कर देती है। विशेषतः कथक जैसी शैली, जिसकी संरचना लय, ताल, भाव और कथा वाचन की विशिष्ट परंपरा पर आधारित है, उसमें यदि शास्त्रीय अनुशासन को समझे बिना केवल दृश्यात्मक प्रभाव के लिए फ्यूजन किया जाए, तो मूल स्वरूप का क्षरण संभव है। अतः यह आवश्यक है नवाचार को स्वीकार करते हुए भी शास्त्रीय आधार, तकनीकी शुद्धता और साहित्यिक संवेदना को संरक्षित रखा जाए। शुद्धता का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि परंपरा के मूल तत्वों के प्रति सजगता है। हमें नई पीढ़ी को यह समझाना होगा कि प्रयोग तभी सार्थक है जब वह परंपरा की सुदृढ़ नींव पर आधारित हो। आज की युवा पीढ़ी प्रतिभाशाली है, परंतु दीर्घकालिक अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता को समझाना एक चुनौती बनता जा रहा है। परंतु इन चुनौतियों के बावजूद वर्तमान समय अनेक संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। शास्त्रीय नृत्य को समसामयिक विषयों से जोड़ा जा रहा है, जैसे पर्यावरण, नारी विमर्श और सामाजिक न्याय आदि। विद्यार्थियों को शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से संत कबीर जैसे संत कवि के विचारों पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, तो वे केवल प्रस्तुति नहीं देते, बल्कि विचार को आत्मसात करते हैं। शिवरात्रि, राम जन्म उत्सव, बसंत पंचमी और होली जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में जब बाल कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में मंच पर आते हैं, तो स्पष्ट होता है कि नृत्य सांस्कृतिक चेतना का जीवंत माध्यम है। डिजिटल युग से प्रभावित होने के बावजूद जब बच्चों को शास्त्रीय नृत्य की लय, मुद्रा और भाव अभिव्यक्ति का अभ्यास कराया जाता है, तो उनमें गंभीर साधना की प्रवृत्ति विकसित होती है। नृत्य परंपरा और आधुनिकता के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। यह अतीत की विरासत को वर्तमान की भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का साधन भी है। लयात्मक गति और भाव अभिव्यक्ति व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करती है। अनेक अध्ययन भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि कला चिकित्सा में नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में संरक्षण और संवर्धन दोनों की आवश्यकता नृत्य के लिए है। विद्यालय स्तर पर कला शिक्षा को महत्व दिया जाए, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी शास्त्रीय नृत्य के मंच विकसित किए जाएं, पारंपरिक ग्रंथों और शास्त्रीय सिद्धांतों का पुनर्पाठ किया जाए, डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए शास्त्रीय मर्यादा का संरक्षण किया जाए, यह वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल मंचीय प्रस्तुति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक विमर्श का माध्यम भी बनता जा रहा है।
आज अनेक कलाकार शास्त्रीय तकनीक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण

0: नारी अस्मिता, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों जैसे विषयों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। विशेषतः कथक जैसी शैली में जहाँ कथा वाचन और भाव अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है, समकालीन विषयों को परंपरागत संरचना में प्रस्तुत करने की व्यापक संभावनाएं हैं। इस प्रकार नृत्य केवल अतीत की कथा ही नहीं बल्कि वर्तमान की संवेदनाओं को भी स्वर देता है। डिजिटल माध्यमों ने भी नृत्य को एक नई दिशा दी है। ऑनलाइन कक्षाओं, वेब प्रस्तुतियों और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य विश्व स्तर पर नई पहचान बना रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य अतीत की धरोहर मात्र नहीं बल्कि वर्तमान की सांस्कृतिक आवश्यकता और भविष्य की सृजनात्मक संभावना है। यह केवल देह की गति नहीं बल्कि भाव, बोध और चेतना की प्रक्रिया है। यदि हम इसे जीवंत परंपरा के रूप में स्वीकार करेंगे तो यह समय के साथ विकसित होते हुए भी अपनी मूल आत्मा को सुरक्षित रख सकेगा। आवश्यक है कि हम इसे संग्रहालय की वस्तु या बाजार की सामग्री बनने से बचाएं और इसे साधना, संस्कार और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम के रूप में आगे बढ़ाएं।
1: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा, परिवर्तन और संभावनाएं। अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी श्रद्धा निगम। बहनों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य ये सुनकर ही आपको ढेर सारे नृत्य याद आ गए होंगे, है ना, और बहुत से गीत भी याद आए होंगे। तो हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनकर आप भी झूम ही उठेंगी।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सर

0: देवदास। अभी हमने इस फिल्म का गीत पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्णमूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाज में सुना। गीत और संगीत था पंडित बिरजू महाराज का। बहनों, हमारे शरीर में हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रासायनिक संदेश वाहक शरीर की विभिन्न क्रियाओं, मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता, मनोदशा, नींद, वजन और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन बहनों, आज की व्यस्त जीवन शैली, तनाव, अनियमित खानपान, नींद की कमी और पर्यावरणीय कारकों के कारण महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ये समस्या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं वरन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। हार्मोनल असंतुलन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में किसी भी हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक या फिर कम हो जाता है, जिससे शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हो सकती है। अधिक चिंता, तनाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी, PCOS, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाले परिवर्तन, रजोनिवृत्ति और कुछ दवाओं का ज्यादा समय तक उपयोग करने के कारण हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिससे हमें कई बार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहनों, इस समस्या से बचने के लिए आप अपने खानपान में संतुलित और पौष्टिक आहार को शामिल कीजिए। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम को प्राथमिकता दीजिए। कोई भी नशीला पदार्थ यदि आप करती हैं तो तुरंत ही उसे छोड़ दीजिए। और हाँ, चिकित्सक की सलाह से ही उपचार लीजिएगा, क्योंकि हार्मोन्स असंतुलन एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसके प्रति जागरूकता, समय पर पहचान और उचित उपचार से इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: बहनों, मौसम की गर्माहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, यानी अभी भी इतनी गर्मी है। और आपको तो पता है कि हमें विवाह समारोह, ऑफिस या बाजार के काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। अपनी त्वचा और सौंदर्य का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो बहनों, हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे हमें पानी की कमी हो सकती है। तो पर्याप्त पानी पीजिए। पानी पीने से त्वचा हाइड्रेट रहती है, जिससे प्राकृतिक चमक भी बनी रहती है। घर से बाहर निकलने से लगभग 20-25 मिनट पहले ही सनस्क्रीन लगाइए। ये त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, टैनिंग और सनवर्न को रोकने में मदद करती है। और दिन में 2 या 3 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ कीजिए, जिससे त्वचा पर जमी हुई धूल है, तेल है, पसीना है, ये हट जाता है। कील मुहासों की संभावना भी कम हो जाती है।

बहनों, ऐसे मौसम में भारी मेकअप से बचना चाहिए। हल्का और वाटरप्रूफ मेकअप त्वचा को आराम देता है। हालांकि अभी शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है तो थोड़ा तो चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए कि हल्का ही रहे मेकअप, और लंबे समय तक ये मेकअप टिकता भी है। तरबूज, खरबूज, संतरा, आम, खीरा, जामुन और जो भी मौसमी फल आ रहे हैं अभी, वो जरूर लीजिएगा। ये त्वचा को सारे आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करते हैं जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। हल्के रंग के सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये त्वचा को ठंडक देते हैं और आरामदायक महसूस कराते हैं। बहनों, हमारे बाल भी धूल पसीने से रूखे और कमजोर हो जाते हैं, इसलिए अपने बालों को नियमित धोकर उचित मात्रा में तेल और कंडीशनर का उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ त्वचा ही वास्तविक सुंदरता की पहचान होती है। और अब क्यों ना एक प्यारा सा गीत और सुन लिया जाए।

अभी हमने वक्त फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में सुना। साहिल लुधियानवी की रचना को संगीत से सवारा था रवि ने। और बहनों, अब चलते चलते कहना चाहूंगी कि किसी को भी जानना और समझना हो तो उसे बोलने दीजिए, क्योंकि मनुष्य का सौंदर्य उसकी जुबान में ही होता है। और अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दमयंती वाजपेयी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं पहला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जहां आप सुनेंगे नंद कुमार जैन द्वारा गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

मिथुन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल मोहम्मद इरफान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म विलन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नंदिनी श्रीकर की आवाज में। फिल्म का नाम है क्वीन।

0: अमित त्रिवेदी का संगीत अन्विता दत्त के लिखे बोल नन्ही श्रीकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म क्वीन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के

जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से।

0: को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने

0: पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमरीका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमरीका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आस

0: पास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गीत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला गीत हम कौन सा सुनने वाले हैं और उसके लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो कहां से प्राप्त हुई है। तो उदित नारायण की आवाज़ में, साथ ही कविता कृष्णमूर्ति। हम गीत सुनेंगे फिल्म हद कर दिया आपने से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिक पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे। ग्राम छेंगा और देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, जवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे की तरफ से। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये

फिल्म हद कर दी आपने से गीत सुना आपने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जिसे संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन का, पटेलनगर मरनोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया का, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से यह अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

आर.डी. बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत जो है मोहम्मद रफी की आवाज में, और इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधे श्याम चावला की ओर से। इसके अलावा यादव मोहल्ला सनावन मध्य प्रदेश से लिखा है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जीवेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की तरफ से। प्रियंका पंचौलिया, संजय पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने हमें लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफी की आवाज में।

शंकर जयकिशन का संगीत नीरज के लिखे बोल, मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म कन्यादान से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आपकी फरमाइश का, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगले गीत को सुनने का, जो हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीजा से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की तरफ से। गोला बाजार बक्सर से हमें लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ से, जो है पंजाब में, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म पाकीजा से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कैफे आजमी के लिखे बोल। लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और आपकी फरमाइश पर ही अगला गीत आपको सुनवाएंगे कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है ताल और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। कवर कॉलोनी बड़वाह से हमें लिखा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म ताल से।

सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निशक्जन के लिए आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का आज लोकार्पण किया। और राज्य में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुने युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। आज की हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम और कार्यक्रम में आज मैं रहूंगी आपके साथ सौम्या शर्मा और मेरा साथ देंगी
0: महिमा दीप पटेल। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से जुड़ा है, संविधान हत्या दिवस।
1: 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था।
0: इस दौरान कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हुई और अनेक राजनीतिक नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।
1: संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य नागरिकों को यह याद दिलाना है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें उन परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है जब लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ा था।
0: संविधान हमें कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और न्याय पाने का अधिकार। जब इन अधिकारों पर रोक लगती है तब लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है।
1: साथियों, इसलिए आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र और संविधान के महत्व को समझ सकें।
0: साथियों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक नागरिक होते हैं। जब हम नागरिक अपने अधिकारों और

0: कर्तव्यों को समझते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत बनता है।
1: इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान और भविष्य के लिए सीख भी देता है। संविधान हत्या दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की मजबूती केवल कानूनों से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों से होती है।
0: जब हम अपने अधिकारों का सम्मान करते हैं और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी खड़े होते हैं, तभी संविधान की भावना सशक्त होती है।
1: हमारे युवा साथियों के लिए भी यह अवसर है कि वे संविधान के मूल आदर्शों को समझें, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएं और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
0: साथियों, एक थी एक छोटी सी चर्चा संविधान हत्या दिवस के बारे में। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, हम जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे होंगे गुरुवार के खास कार्यक्रम यानी आज के खास कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स का, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हम आपको ये कार्यक्रम नहीं सुनवा पा रहे हैं। तो आइए, आप निराश ना होइए, आपको सुनवाएंगे हम पत्रोत्तर कार्यक्रम यानी श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पत्रोत्तर कार्यक्रम। तो आइए हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं।
0: तो साथियों, हमें जो पहला पत्र प्राप्त हुआ है वो हुआ है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का।
1: बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या माही, पूजा छुटकी और शरद कुमार।
0: कोरबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय।
1: जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता सिंह।
0: छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी गायत्री, योगेश का।
1: आइए साथियों, सुनवाते हैं आपको इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अल हिलाल से ये गीत, जिसमें आवाज थी स्माइल आजाद की।
1: गीतकार थे शिवन रिजवी और संगीतकार थे बुलो सी रानी।
0: तो साथियों, ले चलते हैं आपको अगले पत्र की ओर। अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ था यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे, विनोद खडसे का।
1: ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा।
0: सिंघौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख।
1: मुरादाबाद से आयुष खान, इरम गुड़िया, शोएब खान।
0: ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश रानी परी, सुरभि पायल।
1: तो आइए साथियों, सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से ये प्यारा सा गीत। आवाज थी अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।
1: अगला गीत जो हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है वे है पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा।
0: गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल, निशा राठौर।
1: ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कोश व नामदेव परिवार।
0: कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी का।
1: फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश, राहुल शर्मा।
0: बांदा उत्तर प्रदेश से आदर्श कुमार साहू, राहुल कुमार, रामस्वरूप राजपूत, दिनकर सिंह।
1: तो आइए साथियों, सुनवाते हैं आपको इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत, जिसमें आवाज थी नीरज श्रीधर और सुजेन डी मेलो की,
1: और इरशाद कामिल के बोलों को संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, अब अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा।
0: रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल भाविक सिक्का।
1: पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु।
0: जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश।
1: यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके।
0: अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना प्रणय, हीरामन शेंडे। तो आइए साथियों, सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म परदेश से ये गीत। आवाज थी कुमार सानू की।
1: गीतकार थे अनंत बख्शी और संगीतकार थे नदीम श्रवण। पत्र जो हमें मिले हैं सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही मलिक।
0: मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू, संजीव, शुभचंद्र।
1: कोल सिटी बरकागाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला।
1: खोका बिलाई से उत्तम सिंह जंखेल, मोरस अनिल, अजित आयुष नंदनी।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, औशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल का। तो साथियों, सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए से ये गीत, जिसमें आवाज थी कुमार सानू, अलका याग्निक की,
1: गीतकार थे सुधाकर शर्मा, राजेश मलिक और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया।
0: और हम फिर बढ़ते हैं हमारी पत्रों की ओर। पत्र हमें मिला है भिटारी

0: मुस्करा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से राम नारायण पाल, उदय भान, पवन कुमार पाल।
1: मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौण, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन।
0: मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवहानकर।
1: बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवहानकर, सिद्धांत, अर्जुन।
0: बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहानकर, सुमित, ध्वनि गवहानकर।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा का। तो साथियों, सुनते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: 哎呀，我是我们当的。
1: 不打的。
0: 好，
1: 我们当的。不，
0: यहीं
1: पर। यहीं? मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे अजनबी फिल्म का गीत, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की।
1: गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे राहुल देव वर्मन।
0: अब फिर से बढ़ते हैं पत्रों की ओर। तो पत्र हमें मिला है गौरीनगर इंदौर से। आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले का।
1: अगला पत्र ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू।
0: मसीतान डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।
1: अलगीडांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन यादव, आयु श्रीमती फूलजी यादव, समस्त परिवार।
0: मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज।
1: ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। तो साथियों, सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की।
1: गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित श्रोताओं की पसंद पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। साथियों, बिना किसी देरी के दे देते हैं आपको रोजगार सूचना। DSSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पदों की संख्या है 1979।
1: शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार भिन्न भिन्न है। आयु सीमा न्यूनतम 18 से 21 वर्ष, अधिकतम 30 से 35 वर्ष। आयु सीमा पदों के अनुसार अलग अलग है और आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पर विजिट करें।
1: साथियों, ये तो थी आज की रोजगार सूचना। अब बता देते हैं आपको कल के कार्यक्रम। कल के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता।
0: विषय होगा रक्तदान का महत्व और वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी और साथी होगी रोजगार सूचना। तो साथियों, जो घड़ी है वो इशारा कर रही है आप सभी से विदा लेने का। तो अनुमति दीजिए आपके मित्र महिमादी पटेल को
1: और सौम्या शर्मा को। नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यू नॉज AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताइए, आइए अब हम आपको बता देते हैं आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा। पराजित कार्यक्रम NCERT का बाघ 1314। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज के हमारे कलाकार होंगे मोहन लाल कुशवाहा। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे अशोक विश्वकर्मा, बैंजो पर होंगे जब्बार खान और झीका पर संगत करेंगे प्रेम कुमार सोनी। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथ ही होगा जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ, साथ ही होगी भेंटवार्ता स्वरोजगार से जुड़े और शासन की योजनाओं के लाभार्थी राकेश प्रजापति से बातचीत। और आज की सीख का विषय होगा

जोलो लपटा नहीं लगत नेचे नहीं दिखत। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और रात 10 बजे सुनना न भूलिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थे श्रोताओं आज की सभा के कार्यक्रम। आइए हम आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर हिन्दी महक में आप सुनेंगे वार्ता स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य, वार्ताकार होंगे मनोज मिश्रा। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से रागों का देसी तोड़ी। 9 बजे आप सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम में जीतेन चौरासिया को, जिनके साथ ढोलों पर संगत करेंगे अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर संगत करेंगे जब्बार खान। फिल्मी कबालियां सुनिएगा 9:30 पर। 10:05 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा, भाग होगा 8वां, प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। गैर फिल्मी भजन सुनिएगा 10:20 पर। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। महिला सभा का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1 बजे, जो कि आकाशवाणी के मध्यप्रदेश के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें सुनेंगे आप विभिन्न विषयों पर चर्चा। साथी होगा इंद्र प्रभा खरे से काव्य पाठ, साथी होगी गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए उपयोगी जानकारी। 1:30 पर मध्यप्रदेश के अंतर्गत सुनेंगे आप रिली किया जाएगा कार्यक्रम लोक संगीत, जो कि आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। यह कार्यक्रम देशभक्ति पूर्ण बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम है। 1:45 पर आकाशवाणी के मध्यप्रदेश केंद्र से ही रिली किया जाएगा आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति का कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार होंगे रविन्द्र दीक्षित। कल की हमारी सांध्यकालीन सभा में आप शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के मध्यप्रदेश केंद्र से रिली किया जाएगा। इसके अंतर्गत युवा साथी सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथी होगी वार्ता रक्तदान का महत्व, वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी और साथी होगी रोजगार सूचना। फिल्म संगीत सुनिएगा 5:30 पर। शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्यप्रदेश केंद्र से लेकर जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1315। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम, लोकधारा कलाकार होंगी चांदनी रैकवार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा। साथी होगा मानस प्रवचन, प्रसंग होगा बाल लीला का आनंद, प्रवचन करता होंगे सतीश कुमार पांडे। वार्ता होगी मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, वार्ताकार होंगे उमेश पटले। और आज की सीख का विषय होगा जी की बात में फर्क, ऊ के बाप में फर्क। 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्यप्रदेश से कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर, और 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10 बजे आप सुनेंगे नाटक पत्थर दिल, और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग कामेश्वरी और गंगेश्वरी। ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्यप्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव।

0: पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात? सच में श्रोताओ, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओ, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओ, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों

0: को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधु कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
4: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
4: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ

0: जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
1: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
3: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
4: आकाशवाणी

0: 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं मोहनलाल कुशवाहा। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे अशोक विश्वकर्मा, बेंचो पर होंगे जब्बार खान, जीका पर होंगे प्रेम कुमार सोनी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं मोहनलाल कुशवाहा से ये सैरो।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गारी मोहनलाल कुशवाहा से। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं अशोक विश्वकर्मा, बैंजू पर हैं जब्बार खान और झीका पर हैं प्रेम कुमार सोनी।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहनलाल कुशवाहा से, ये उनकी गाइड ढमरियाई। इनके साथ ढोलों पर संगत कर रहे थे अशोक विश्वकर्मा, बैंजो पर थे जब्बार खान और चीका पर थे प्रेम कुमार सोनी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुंदरी लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये लोक शैलीबद्ध गीत मोहनलाल कुशवाहा से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: चलिए कार्यक्रम को अगर और बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये मोहनलाल कुशवाहा से बेटी बचाओ पर गीत। ढोलों पर संगत कर रहे हैं अशोक विश्वकर्मा, बैंजो पर हैं जब्बार खान और जीका पर हैं प्रेम कुमार सोनी। तो लीजिए सुनिए मोहनलाल कुशवाहा का गाया ये बेटी बचाओ गीत।
4: लड़कन से कम नहीं आ

अभी आपने सुना मोहनलाल कुशवाहा का है ये बेटी बचाओ पर गीत। ढोलों पर संगत खरी थी अशोक विश्वकर्मा ने, बैंजो पर थे जब्बार खान, जीगा पर थे प्रेम कुमार सोनी। चलिए कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये चौकड़ियाई मोहनलाल कुशवाहा से।

और इसी चौकड़िया के साथ ही आज का हमारा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार थे मोहनलाल कुशवाहा, इनके साथ ढोलों पर संगत कर रहे थे अशोक विश्वकर्मा, बैंजो पर थे जब्बार खान और चीका पर थे प्रेम कुमार सोनी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं गुमशुदा संबंधी सूचना। पहली गुमशुदा संबंधी सूचना है

सुजाता शिवहरे की पुत्री हैं स्वर्गीय सुनील शिवहरे की, निवासी हैं नया पाटकपुरा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन से। इनकी उम्र करीब 18 वर्ष और 2 माह की बताई गई है और ये 1 जून 2025 रात्रि से लापता हैं। रंग गोरा है, लंबाई 5 फुट है। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, इनका नाम है सुजाता शिवहरे, उम्र करीब 18 वर्ष है, रंग गोरा है, लंबाई 5 फुट है, 1 जून 2025 रात्रि से लापता है। नंबर इस प्रकार है, पहला नंबर है 7398791625 यानी 7398791625। दूसरा नंबर है 9140495973 यानी 9140495973। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, नंबर है 7398791625 यानी 7398791625 यानी 7398791625। दूसरा नंबर है 9140495973 यानी 9140495973। ये थी सुजाता शिवहरे की गुमशुदा सूचना। आइए आपको दे देते हैं दूसरी सूचना, जो कि है साबरीन की। पति का नाम है आरिफ, निवासी हैं ग्राम उदनपुरा थाना कालपी जनपद जालौन से। उम्र करीब इनकी 30 वर्ष बताई गई है। रंग सांवला है, कद 5 फुट का है, कपड़ों में सलवार कुर्ता पहने हुए। 6 जून 2026 को गुरुवार को शाम 5 बजे घर से लापता हैं। जिन किसी व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी लगती है वह इस नंबर पर जानकारी दे सकता है। इनका नंबर है 8303911974 यानी 8303911974। यह गुमशुदा सूचना है साबरीन की। पत्नी है आरिफ की, उम्र करीब 30 वर्ष है, रंग सांवला है, कद 5 फुट है, कपड़ों में सलवार कुर्ता पहने हुए। 6 जून 2026 को गुरुवार शाम 5 बजे से लापता हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी लगती है इस नंबर पर जानकारी दे सकता है। नंबर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अब फिर से बता देता हूं, नंबर फिर से नोट कर लीजिए 8303911974 यानी 8303911974। ये थी गुमशुदा सूचना साबरीन की। और इसी के साथ आज की हमारी गुमशुदा सूचना अब यहीं पर समाप्त होती है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको बता देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतखाओ। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी भेंटवार्ता स्वरोजगार से जुड़े और शासन की योजनाओं के लाभार्थी राकेश प्रजापति से बातचीत। और आज की सीख का विषय होगा जोलोल उपटा नहीं लगत नेचे नहीं दिखत। और रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। और रात 10 बजे सुनना ना भूलिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: And in this over, we have seen a couple of singles for Dilara and Firdaus, and we have then subsequently seen three white balls. Dilara Akhtar facing up once again, 4 from 7 balls, standing well inside the crease with Richa Ghosh standing up to the stumps, which she often does. This time, back of a length, pulled away, fielded in the deep, it is taken!
2: श्रोताओं, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद 7:21 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मॉनसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश भर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था, जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203 करोड़ 56 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं बहने, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
3: नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख

0: की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
1: भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
2: 23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने, उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश EL का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुर्ना जिले के ग्राम बड़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केन्द्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रूपये से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंतिया व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना के चाचौड़ा शाखा में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल

गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सबरे भैया बेनंद खां आनंद भैया की दो यहां जोड़ के राम राम पहुंचावे। भैया बेनंद रो अपन सभी जने जानत हैं कि मेहनत मशक्कत अगर अपन सही समय से करते हैं और सही लाइन में मतलब सही प्रकार से और सही दिशा में करते हैं तो भैया सफलता अपन को जरूर मिलत है। जब आपको अपन का ध्यान रखने हैं भैया बहनों ऐसे ही देखो अपन खेती किसानी को काम कर रहे हैं, अपन सभी जने खूब मेहनत करते हैं, खूब सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर कछु अपन ने लापरवाही करी तो अपन का नुकसान उठाने पर। अब जैसे भैया शुरुआती तौर पर अपन देखते हैं कि खेती किसानी अपन करते हैं तो खेती किसानी की शुरुआत में अपन जैसे मिट्टी की जाँच कर लेते हैं, खेत की तैयारी कर लेते, अब उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज आउत है वो भैया बीज होते हैं। तो भैया बीज अपन के लाने कैसे लेने हैं, भी अपन के लाने प्रमाणित बीज ही लेने। प्रमाणित बीज से कई प्रकार के फायदा हैं जब बात अपन जानत हैं। प्रमाणित बीज होवे से भैया भी जांच पड़ताल से करे गए बीज रात हैं, अच्छे से जांच पड़ताल होते हैं उनकी, और भैया सबसे अच्छी बात का है फसल अपनी अच्छी पैदावार होते हैं, रोग कम होते हैं उनमें जो उनसे अपनों आगे जाके मुनाफा होते हैं। तो भैया ये बात को अपन को ध्यान रखना है कि फसल की बुवाई अपन प्रमाणित बीज से करें। भैया बहनों एक बात और अपन से कह भी कहे, देखो भैया अपन सभी जने खूब मेहनत से काम करते हैं, अब जैसे घर में अपन ने बाग बगीचे लगाओ है ना भैया, तो बाग बगीचों जो अपन लगाऊ थे ऊखा अपन खा लगा के ऐसा ही छोड़ नहीं देने आए, ऊखा अपन खा बिल्कुल समय समय पे उनकी देख रेख करने। अब देख रेख कैसी करने, कछु नहीं करने आए, छोटी छोटी बातों को अपन का ध्यान रखने है। जैसे भैया अब गर्मी कसके पड़ रही है अपन जानते ही है, तो क्या करें अपन सवेरे और शाम तना तना सो पर्याप्त मात्रा में पानी दे दिए, पानी से क्या हुई है भैया सवेरे बढ़िया ठंडक रात है शाम का भी ठंडक रात है, तो भी पेल पौधा जड़े उनकी का है जले ना पत्ते ना जले, तो सवेरे शाम सिंचाई करने हैं अपन के लाने पानी देने हैं। और भैया ये बात को भी ध्यान रखने हैं कि जैसे अपने गमला में अपन ने पौधा लगाए तो गमला में जो पौधा लगाए उनकी साफ सफाई करने हैं, और तेज धूप से बचावे के लाने जो जालीदार जो हवा पास वालों एक कपड़ा आउत है भैया ऊका अपन का उसे ढाक के छायादार बना देने जौन से पंचवैयारों जो अपने छोटे छोटे से पौधा हैं बे धूप से बच सके। नहीं बातों को अपन का ध्यान रखने भैया बहनों, अब अगारू भी बतकाओ कर भी बर्तन रोक के।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: पंचवैयारो का होते है कि कमों कमों कौन दिन ऐसी घटना घट जाते है और ऐसा काम हो जाते है जो अंकला ने अपन कई वर्षों तक याद करते है। ऐसे ही भैया बहनों आज के दिन एक घटना भई थी भैया, बाबाती संविधान हत्या दिवस के रूप में अपन का मनाऊ थे। कहा बहुत भैया बहनों के 25 जून 1975 का आपातकालीन घोषित दिन कर गो आज को दिन 25 जून का। कहा बहुत के ई दिन जौन भैया सत्ता पे लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी सत्ता पे बैठे

उनने का करो अपनो सत्ता को अपने पावर को गलत उपयोग करके लोगन का परेशान करो। उनके जो मौलिक अधिकार थे, उनकी जो स्वतंत्रता थी, वो खिलाने उनने बिल्कुल रोक लगा दी। वे कछु भी काम नहीं कर सका था, कौनों ने आवाज उठाई तो वो खिलाने सजा दई आती। यही से भैया 25 जून का जो आदेश निकालोगा तो इकिलाने भैया इतनी तानाशाही भई थी, उनके खिलाफ कछु लोगों ने भैया आवाज उठाई, सब एकजुट के मिल होके सब ई काम में अपने मिल के काम करो, जो उनसे भैया जा समस्या दूर भई। तो उन्हें सबका याद कराए भय आज को दिन अपन याद करते हैं, तो उन सबके लाने भैया अपन नमन करते हैं, जो भैया बहन उस समय परेशान भय। तो भैया ई को उद्देश्य का है आज को दिन जो अपन 25 जून का मना रहे हैं, ई को उद्देश्य जो ये है कि भैया अपनी जो जनता है वह बिल्कुल जाग जाए कि कोनो भी सत्ताधारी व्यक्ति है अगर परेशान करते हैं नागरिकन के अधिकार के लाने, उनकी स्वतंत्रता के लाने अगर रोक लगाते हैं, तो अपन का काकन ने अपने अधिकारन की रक्षा करने

हैं वो है भैया बहनों पर्यावरण। भैया बहनों, पर्यावरण एक ऐसी चीज है, ऐसी जानकारी है, ऐसा सब कछु है कि अपन उके बिना नहीं रह सकत। कैसे भैया? कि अपन जहाँ भी रात हैं, जो भी वातावरण में, हवा में, पानी में, अपन हवा में सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं, उको उपयोग कर रहे हैं, वो सब चारों तरफ ही हमारे पर्यावरण में आउट है। तो अपन सबको फर्ज बनत है कि अपन अपने जो चारों तरफ को पर्यावरण है उका साफ सुथरा रखें, उका अपन गंदो ना करें। विशेष रूप से भैया बहनों, अपन के लाने पेड़ पौधा खूब लगाने हैं। पेड़ पौधा का है, अपन का बार बार बताऊ थे। अब देखो, बरसकारी को मौसम आ रहा है, तो बरसकारी मौसम में अपन अगर तना तना से एक एक व्यक्ति एक एक दो दो पौधा लगाए, तो भैया सबको मिलके अगर लगाए तो बहुत सारे पौधा चारों तरफ ही पौधे पौधा हो जाए। उसे कहा हुई है अपना पर्यावरण है, शुद्ध हवा है। भैया बहनों, ऐसे ही कछू अपने भैया जयंत विश्वकर्मा जी लोकगीत के माध्यम से अपन से कह रहे हैं। तो भैया बहन सुने जो पर्यावरण लोकगीत।

0: पंच भैया और जयंत विश्वकर्मा जी की आवाज में अपन सभी जने सुन रहे थे जो पर्यावरण लोकगीत। भैया बहनों देखो, अपन ने सुनो हुई है, जब कोनो व्यक्ति जीवन में अच्छे काम करत हैं, विकास के काम करत हैं, तब भैया वो विकासशील हो जाते हैं। और अगर उन्हें कोनो ई कामन में कोनो समस्या भई है कि कौन प्रकार से मेहनत करी है, वे सब अपने काम के बारे में अपन से साझा करत हैं। उसे कहा है अपन का सीख भी मिलत है, कैसे सीख भी मिलत है कि भैया इन्हें कौन प्रकार से काम करे, कैसे काम करे, जो उनसे भैया जी आगे जाके विकास की रास्ता में आगे बढ़ गए। ऐसे भैया एक भेंट वार्ता अपन कहाँ सुनवा रहे हैं, स्वरोजगार से जुड़े और शासन की योजनाओं के लाभार्थी राकेश प्रजापति जी से राजेंद्र अहिरवार को बतकाओ। तो भैया बहन सुने जब भेंट वार्ता।
1: हमारी ग्राम सभा के सभी भैया बहनन खा राम राम। देखो भैया बहन हरो, अपने बीच में टेमो टेम पे कछु ऐसे भैया बहन आउत हैं जिन्हें सरकार से कई तरह की योजनाएं सो मिली, संगे संगे देखो भी स्वयं को विकास करवे के लाने स्वरोजगार से जुड़ी और आज भी बढ़िया रोजगार भी कर रहे, संगे संगे अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे और अपने परिवार को भरण पोषण भी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे हैं। तो ये एक भैया अपने बीच है तो उनसे अपन अपना मिलवाओ। भैया राम राम।
2: राम राम
1: भैया। अपना नाव का है
2: राकेश प्रजापति।
1: राकेश प्रजापति भैया अपन कौन गांव से आए?
2: टीकमगढ़ के पास है गोर।
1: अच्छा, टीकमगढ़ के पास गोर से आए हैं। राकेश भैया अपन जो बताओ कि अपन का का काम करा था?
2: अपन मोटरसाइकिल ऑटो पार्ट्स का काम करा था।
1: अच्छा अच्छा, ऑटो पार्ट्स को भी काम करा थे। और का है भैया काम?
2: खेती किसानी भी है।
1: भैया अपन ने बताओ कि अपन जैसे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग को काम करा था, ऑटो पार्ट्स भी अपन देखो माने बेचा था, तो अपन जी स्वरोजगार से कब से जुड़े, कै साल हो गए? अपना
2: 8 साल हो गए।
1: माने 8 साल हो गए।
2: हाँ।
1: तो का कछु देख रहे अपन जब से लेके अवेलो, का बदलाव?
2: बड़ा ली दुकान, पहले कुछ और थी आज कुछ और है, बढ़ गई दुकान।
1: अच्छा, दुकान बढ़ गई अपनी।
2: हाँ।
1: तो बताऊ थे भैया माने पहले का स्थिति है थी और आज का स्थिति है?
2: पहले जब नई नई खोली थी दुकान तो कम दुकानदारी होती, आज पहचान हो गई, जगह जगह मैंने हर लोग जानने लगे तो दुकानदारी बढ़ गई।
1: तो अपनी दुकान में का का अपन बेच रहे
2: जी? मोटरसाइकिल का, ऑटो पार्ट्स का सामान, इसमें सुधारत भी हैं और रेडियम का काम भी करते, साथ में नंबर प्लेट वगैरह बनाते,
1: सब काम।
2: हाँ, सारे काम करते ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड।
1: तो गांव के हिसाब से अपन जो काम कर रहे हैं स्वरोजगार से जुड़े हैं, तो अपने तक कितने जने अपन लगाए हो, कै जनन का अपन काम दे रहे?
2: एक जन हो।
1: अच्छा, एक जने और लगे।
2: आओ,
1: चलो भैया बहुत नौनी बात है। अपन पढ़े लिखे कहाँ लो हो राकेश भैया?
2: बीए
1: लो अपन ने देखो पढ़ाई करी अपने उन भैया के लाने, देखो कितनी बड़ी सीख है कि देखो पढ़ाई अपन संगे संगे करें, उके संगे देखो अगर अपन स्वरोजगार कर रहे तो देखो कोनू कौशल भी विकसित हो।

0: सरकार का जो काम कर वो भी बहुत ही जरूरी है। तो अपन ने देखो कितना तो बढ़िया रास्ता चुनू कि अपन देखो स्वरोजगार से जुड़ी और खुद ही तो देखो भैया आमदनी अपनी बढ़ा रहे हैं और संगे संगे दूसरे का भी काम दे रहे हैं। तो कितनी आमदनी अपना हो जाता भैया?
1: 4-5 हजार रुपए दिन।
0: अच्छा जी, महीना में के रोज की?
1: नहीं, दुकानदारी टोटल है 4-5 हजार की।
0: अच्छा, रोज के लाने?
1: हाँ।
0: चलो भैया बहुत, देखो कितनी बड़ी बात है कि देखो अपन 4-5 हजार रोज ना अपन मिल जाते हैं तो एक मतलब है कि अपनी जो दुकान है वो बढ़िया चल रही है। तो और उतने कैसो का विकास हो रहा हो? अब हम बात करें अपने गाँव की,
1: टंकी बन गई तो नल सुविधाएं भी है, पानी की सुविधा भी पर्याप्त है और वहाँ से तहसील भी हो गई है देवड़ा में।
0: तहसील?
1: हाँ, देवड़ा में दुकान है
0: तो और हो गई है।
1: हाँ।
0: अच्छा कॉलेज भी भैया होते बन रहा हो?
1: नहीं, कॉलेज नहीं है बन रहा।
0: अच्छा, कॉलेज पास में है?
1: टीकमगढ़ में।
0: अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। और अगर अपन पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अब कैसी जागरूकता है भैया बहनन में, अब पढ़ाई के प्रति कितना रुझान बढ़ू है?
1: सब अच्छा ही है, मैंने बाहर पढ़ा रहे, अच्छे स्कूल में एडमिशन है।
0: तो अपने तो सरकारी स्कूल कह लो है भैया?
1: अपने सर 12 तक,
0: 12वीं तक है स्कूल। देखो कितनी बढ़िया है कि अपने तो 12वीं तक स्कूल है, माने अपने बाल गोपाल आराम से पढ़ाई कर सका। अपने कितने का बाल गोपाल है भैया?
1: दो बच्चे हैं।
0: तो भैया दोनों जने पढ़ रहे हैं?
1: हाँ।
0: चलो बहुत बढ़िया है। और अपन से जो जानू चाहे, आज हम देख रहे हैं कि कितनो स्तर बढ़ रहा है, माने पढ़ाई को स्तर बढ़ रहा हो, काम को स्तर बढ़ रहा हो, तो अपन ने क्या महसूस करो? आज जो मार्केट में भैया बहन बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो वही के अनुसार चल वो भी बहुत जरूरी है। जैसे बिजली वाली जो वाहन आए हैं तो उनके आवे से अपने दुकान पे कछु असर भी भाव हुई है भैया?
1: हाँ भाव है ना।
0: तो अपन बताओ भैया कि अपन ने भी सोचो कि भैया हम भी जो बिजली उपकरण है जो ले आए और भैया एक लाने भी सोचे?
1: हाँ सोची है ना, लाने हैं सामान लाने, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने लगी जाना तो सामान तो लाना ही पड़े उनका।
0: अच्छा अच्छा, तो अब इलेक्ट्रिक जो वाहन अपने आउ थे रिपेयरिंग के लाने तो अपन उन्हें देखा था?
1: हाँ देखा था।
0: तो इको जो मार्केट बढ़त जा रहा हूँ, देख रहे हैं कि आज दूसरे तीसरे व्यक्ति के हाथ में बैटरी वाली जो गाड़ी है, स्कूटी, ई बाइक जी का अपन कहते हैं, बा खूब भैया बहना चला रहे हैं, खूब बढ़िया से बढ़िया। देखो उनको रोज को काम हो रहा है ना, आवागमन भी सरल होगा। संगे संगे देखो जो ईंधन है जी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जा रही, माने अब कितना दोहन हो रहा वो कम हो जाए है, तो अपन हाँ बहुत ज्यादा अपनी आमदनी पे भी देखो प्रभाव पड़े, संगे संगे जो खर्चा भी कम हो जाए। तो का कछु अपन महसूस करा था बिजली की बाइक की अपेक्षा जो पेट्रोल की बाइक है वो खा देखो कम करो चाहिए भैया बहनन खा, और अगर बिजली की बाइक से काम चल रहा तो सबसे नोनो है, तो अपन का कछु सलाह दो जा।
1: इलेक्ट्रिक गाड़ी में यही है कि अपने ईंधन की भी बचत हो रही, पैसे की बचत हो रही, और सबसे बड़ी बात कि उसकी स्पीड कम है, माने एक्सीडेंट के आसार कम है।
0: अच्छा, माने देखो चलावे में भी जैसे सुविधाजनक हाँ। है और जो सस्ती भी है।
1: सस्ती भी है।
0: अब जब एक ही कीमत की अपन बात करें तो का कछु अपन देखा तो कितनी कीमत में जा जाता है?
1: 30-40 हजार रुपए में
0: आराम से, 30-40 में देखो मिल जाए तो बात तो मिलत हुई है भैया एक के आसपास।
1: हाँ, एक लाख से।
0: अच्छा, तो कितनी बढ़िया है, माने आधे दामन में आपका बिजली वाली बाइक मिल रही और पर्यावरण के लाने भी देखो कितनी सुरक्षित है, कैसे इसे धुआं भी नहीं होता ही, और स्पीड भी भैया बता रहे हैं कि बहुत कम है, तो आपका चलावे में भी दिक्कत नहीं है, आराम से सामने वाले भी बढ़िया वही स्पीड में चलाए हैं, आप भी चलाओ तो आप सुरक्षित पहुंचो।
1: और का?
0: अच्छा, ई पे भैया दो जने भी बैठ सकते हैं?
1: हाँ, दो जने
0: आराम से जावे में दिक्कत नहीं है।
1: और
0: अब अपन भैया बहनन के लाने कछु जो भी पूछो चाहे, अपने गांव के आसपास या अपने गांव में सोलर पैनल भी सरकार लगवा रही है, तो का अपने आसपास लग रहे हैं?
1: हाँ लग रहे हैं ना, हमने खुद लगवाओ पे।
0: अच्छा अच्छा, अपन ने भी लगवाओ हाँ। तो बताओ दी के बारे में कितने को लगो है, तो सरकार से कितनी सब्सिडी मिली भैया अपना?
1: सब्सिडी तो मिली अपना, पूरा खर्चा आया उसमें 12 हजार रूपए।
0: अच्छा अच्छा, तो अपना कितनी मिल गई सब्सिडी?
1: सब्सिडी काफी मिल गई है, पता नहीं 12 हजार रूपए दिए अपन ने।
0: अच्छा, तो इनमें का लगो भैया अपना?
1: अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, और का नाम ये जमीन की रजिस्ट्री, जहाँ अपन को लगवाना है उसका रजिस्ट्री लगती है।
0: अच्छा, सोलर पैनल लग जाए से राकेश भैया अपना फायदा का हो रहा है?
1: उससे बिजली की बचत हो रही, और समय पे अपन को पानी भी मिल रहा है, जैसे मोटर चल रही उससे, अब रात में जो अपन पानी डालते थे अब वो भी सुविधा हो गई कि रात में डालने की अब जरूरत नहीं पड़ती, दिन में डाल देते पानी।
0: हाँ, अब तो लाइट की हाँ,
1: समस्या नहीं रही अब लाइट की।
0: तो अपने गांव पास जितने किसान भैया बहन हैं सबके घर लगी जा?
1: लेकिन लगभग सबके यहाँ है,
0: माने लगत जा
1: रहे? लगत जा रहे धीरे।
0: अच्छा अच्छा, चलो जब बहुत बढ़िया है भैया। पानी भैया कहाँ से अपन मिला थे फिर?
1: कुआ है अपना।
0: अच्छा कुगा से अपना और बढ़िया।

0: जो सोलर पैनल लगे हुए हैं
1: मोटर अपनी चल जाए।
0: अब ई के दाने जैसे बताए हुए जो अपने वैज्ञानिक भैया उठे जो अपने जो मैकेनिक जो लगावे वाले
1: हाँ।
0: जो कई साल तक के लाने अपने लाने सुविधा हो गई
1: जो 30 साल की गारंटी में है।
0: 30 साल
1: 30 साल
0: 30 साल तक आपका बिजली की कोई समस्या नहीं है। सीधा सीधा आपने अपने मोटर स्टार्ट करो तो वो अपन काम कर सके और रात और दिन चार्ज अप चला सके।
1: चार्ज
0: ऐसा नहीं है कि दिन ही दिन में चलाने
1: नहीं नहीं अभी उसमें बैटरी रखना पड़ेगा फिर।
0: अच्छा
1: रात में चलाने के लिए फिर बैटरी रखना पड़ेगा। अभी दिन ही दिन में चलती हूँ
0: माने अगर बैटरी है तो वह दिन में चार्ज हो जाए
1: हाँ।
0: और रात में बढ़िया काम करे
1: रात में
0: काम अभी एक अच्छी सुविधा है चार्जेबल बैटरी है बढ़िया भी चार्ज हो जाए और बढ़िया फिर अपनो रात में भी सिंचाई कर सके। अब लगातार देखो भैया बहनों सरकार भी प्रयास कर रही कि अपन और जो बिजली की मोटर है उनके स्थान पे अपन जो सोलर पैनल लगाए और संगे संगे देखो आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाए जिससे कि जिससे अपनो जो खर्च है वो कम हुई है और जो सौर ऊर्जा है वो सबसे सस्ती है और सबसे फायदेमंद है।
1: हाँ।
0: तो राकेश भैया आप का कछु देखत हो इसे का प्रभाव पड़ो आपकी आमदनी में कितनों का सुधार भाव।
1: प्रभाव तो बहुत पड़ा है कि अपन को एक तो पैसे की बचत है उसमें वो सुविधा है कि अपन को जब चाहिए बिजली तब मिल जाती है। पैसे की बचत सबसे ज्यादा है क्योंकि अभी बिजली विभाग वालों अब लाइट देते भी हैं और नहीं भी देते हैं जिससे अपन को जब भी पानी डालना पड़े अपना चालू करो पानी मिल जाता।
0: चलो अपने पंच भैया से का कछु अपन कहो चाहो कि देखो भैया बहनों अगर अपन स्वरोजगार कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं कि देखो हम बढ़िया से बढ़िया रिपेयरिंग को सामान भी रखे अब इलेक्ट्रिक बाइक के लाने भी सोच रहे का संदेश अपन दो चाहो कि देखो आप खुद अपने मालिक बनो माने खुद को स्वरोजगार करो तो आप खुद दूसरे का काम दे सकते ही आपका काम न मांगने आए का उसे का कछु कहो चाहो अपन
1: देखेंगे भैया समय खराब नहीं करो नहीं लगी गए तो अपना स्वरोजगार देखो और बढ़िया से अच्छे काम करो काम बढ़ जाए तो बढ़िया आदमी रखो अपना एक देखे वो चाहेंगे भैया स्वयं का काम करो।
0: बिल्कुल तो देखो भैया बहन हरो आज अपने बीच है स्वरोजगार कर रहे भैया राकेश प्रजापति और कितनी नोनी इन्हें अपन सलाह दी कि तो अच्छा बतकाव करो आज अपन अपने बीच आए अपन ने इतनी अच्छी जानकारी दी अपन को बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद
2: भैया बहन हरो अभी अपन सभी जने सुन रहे थे भेंट वार्ता स्वरोजगार से जुड़े और शासन की योजना के लाभार्थी राकेश प्रजापति से राजेंद्र अहिरवार जी को बतकाओ। वो भैया बहनों देखो अपन ने सुन लो ये कि अगर अपन सही दिशा में काम करे तो सफलता अपन का जरूर मिलत है। भैया बहनों देखो शादी ब्याह को समय चल रहा है अपन देख रहे हैं कि शादी ब्याह के समय में हर बार अपन कहते हैं कि खुशी को मौका रात है चारों तरफ भी खुशहाली रात है लेकिन एक बात पे अपनी समस्या बिगड़ जाते है अपना माहौल खराब हो जाता है। कैसी हो जाते भैया कि अपन दहेज की मांग करने लगत पहला से अपन भत्काव कर लेते हैं कि हमें जो चाहने वो चाहने तो जैसे तैसे करके मोड़ी वालों अपनी हैसियत से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोड़ी का देते हैं। खैर जो गलत बात तो है लेकिन तब भी जो दहेज के लोभी हैं दहेज मांगने वाले हैं वे भैया वो बात को बिल्कुल उनको पेट नहीं भरता है उन्हें जितो दिए उतो भी कम है। तो भैया बहनों हमारा जो अपन से निवेदन है हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि अपन के लाने ना दहेज लेने हैं ना देने हैं। अगर भैया बहन हो देखो जोन घर में बिटिया है भी ये बात को ध्यान रखें कि दहेज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े ना जो सोचें कि दहेज के लाने पैसा इकट्ठो करने हैं अपन का करें कि आज ही से अपनी बिटिया के लाने अच्छी परवरिश दें अच्छे से पढ़ाई लिखाएं और अगर ऊ के लाने अपन ने अच्छो काबिल बना दो कौन अधिकारी बना दो कछु अच्छो व्यापार बिजनेस करवा दो तो जो लड़का वाले हैं भैया भी अपनी उपत के ऊ मोड़ी को हाथ मांग भी अपने पास आए हैं और ऊ खा दहेज की बिल्कुल बतकाव ना करें भी कैसे बखुद इतनी काबिल हो जाए कि रुपया पैसा बिल्कुल पानी की तरह ऊ के पास आए। ऐसे भैया जो लड़का वाले हैं उनसे भी हमारा क्या वो है कि अपन मान लो का सोचाते हैं कि दहेज ले भी की सोचाते हैं तो दहेज के चक्कर में एक बार ऐसा भी भाव है कि दहेज के चक्कर में कमों कमों बिना पढ़ी लिखी बेबहू ले आए तो उसे कहा हुई है भैया उन्हें पैसा तो मिल गया और पैसा कितने दिन तक काम करे अपन सोचो। और अगर अपन वही जगह पे दहेज भूल के कोनो पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर में ले आए तो देखो भैया कितने फायदा है बस जो पढ़ी लिखी बहू हुई है बस घर के अच्छे से काम करे समझदारी से काम करे अपनी जो नई पीढ़ियाँ है अपने लड़का बिटिया हुई है उनके लाने बढ़िया अच्छे संस्कार दे उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अगर कोनो अस्पताल में समस्या हो जाए कोनो ऐसी समस्या आ जाए जो घर परिवार में समस्या बिद आवे तो भैया बा कोनो न कोनो नौकरी करके सरकारी नौकरी पाके कोनो समझदारी से व्यापार करके घर परिवार भी अच्छे से चला।

सका थे। तो भैया अगर अपन दहेज से दूर रहें तो कई प्रकार के फायदा है, और भैया तब भी अपन दहेज के चक्कर में पड़े तो का हुई है, वही हुई है जो डॉक्टर अरविंद सोनी और बद्दी प्रसाद खरे निरंकार जो ये दहेज विरोधी लोकगीत के माध्यम से अपन से कह रहे हैं। भैया बहन सुने जो दहेज विरोधी लोकगीत।

भैया बहनों, अबे पॉन्स सभी जने सुन रहे थे डॉक्टर अरविंद सोनी और बद्दी प्रसाद खरे निरंकार जी को गाओ भाव जो दहेज विरोधी लोकगीत। और भैया बहनों देखो, अपन जानत हैं कि अपन कोनो भी काम अगर अच्छे से करत हैं तो भैया अच्छो होत है। अब जैसे अपन बीच बीच में अपन के लाने अच्छी सीख देते हैं, अच्छी सीख को मतलब जो नहीं है भैया कि हम अपन के लाने कोनो चेतावनी दे रहे हैं या कोनो चीज सिखा रहे हैं, कहने को मतलब जो है भैया के समाज में और जीवन में जोन भी समस्याएं रहती हैं उनसे अपन के लाने अवगत कराब हुए, अपन के लाने सावधान करबो है। ऐसे भैया आज की सीख को जो विषय है वो है जो लो उपटा नहीं लगत अपन नीचे नहीं देखत। कहने को मतलब भैया बहनों जो है कि अपन देखत हैं, अपन ने सुनो भी हुई है कि जब लो अपने पाँव में उपटा नहीं लग जात तब लो अपन नीचे की तरफ नहीं देखत आए, सीधे अपन बेसुध में चलत रहते हैं। और भैया उपटा लगवे के बाद भैया का होत है कि अपन का दर्द भी होत है और फिर अपन का समझ में आउत है कि भैया उपटा लग गओ। ऐसे भैया अपन के लाने ऐसा कोनो काम नहीं करने आए कि जौन से अपन के लाने उपटा लगे मतलब नुकसान हुए। अपन पहले ही से समझ जाओ ना, पहले ही से अपन जमीन से जुड़ के काम करो, ज़्यादा ऊपर को मतलब आगे बढ़ने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ने आए, समझदारी से जमीन पे रह के काम करने हैं। अगर भैया अपन ने लाभ के चक्कर में ऊटपटांग काम करे, लापरवाही करी तो भैया का हुई है अपनो नुकसान हुई है, और अपनो नुकसान हुई है और कौन तो सबले का कहे हैं भैया, सबले जो ही कहे हैं कि उन भैया का जब लो उपटा नहीं लगो तब लो भैया भी नीचे नहीं देखा था। ऐसे भैया बहन हम अपन से जो ही क्या वो है कि अपन सही समय से अपनो काम करें, सावधानी रखें, सतर्क रहें तो अपन का क्या हुई भैया जीवन में नुकसान कम हुई है और अपने सब काम अच्छे से हुई हैं। अच्छे से भैया बहनों सब काम एक काम से और हुई हैं, कैसे भैया अपन के लाने अपने बाल गोपालन खां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करवाने हैं। भैया जोन मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लाने भैया आगे बढ़बे को सिर्फ एक ही माध्यम है वो है शिक्षा। अगर अपने बाल गोपालन लाने अपने परिवार के लाने अपन अच्छी शिक्षा दें हैं तो भैया का हुई है उनको जीवन स्तर अच्छे हुई है और भैया भी आगे विकास करें। तो भैया बहनों ऐसे ही कछु लोकगीत के माध्यम से अपने रामनाथ अहिरवर भैया साक्षरता लोकगीत में कछु बातें कह रहे हैं, तो भैया बहन सुने और गुने जी बतकाओ।

भैया बंदर रामनाथ अहिरवार जी को गाव भाव जो साक्षरता लोकगीत अभी अपन सभी जने सुन रहे थे। अब हो रही है चलवे की बेरा। सो चलवे के पहला ग्राम सभा कार्यक्रम के कल कार्यक्रम सुन ले जाए। काल के कालापन सुने, मानस प्रवचन प्रसंग हुई है, बाल लीला का आनंद, प्रवचन करता हुई है सतीश कुमार पांडे जी, वार्ता कल सुने मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, वार्ताकार हुई है उमेश पटेले, आज की सीख जी की बातन में फर्क उके बाप में फर्क, अपना बतका हुई है अब दे अपने आनंद भैया का विदा, पंचों राम राम।

ग्रामीण भाइयों के लिए अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं द ट्रेन से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है RD बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म द ट्रेन से ये गीत।

फिल्म गीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं नीरज का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया है SD बर्मन ने। फिल्म का नाम है गैम्बलर।

कार्यक्रम में जब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ब्लैकमेल से ये गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है जूली।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में रिजर्व सुनिए जोशीला फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में जब सुनी एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म सागर से ये गीत। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में जब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म जवानी दीवानी से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म जवानी दीवानी से ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। फिल्म संगीत के क्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म ये वादा रहा से ये गीत। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

फिल्म ये वादा रहा कि इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And

0: together, becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल तीन दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
0: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: In a fair and equitable manner.
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में

0: सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रूचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और

0: क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
2: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं।

0: पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की हिसाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर GB। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 MW की वो डेटा सेंटर्स थे, क्लाउड थे, आज 1500 GW का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर,
1: जी
0: और वो 3000 GW टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है,
1: जी
0: उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर
1: जी
0: एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है।
1: जी
0: हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे। आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
0: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक UPI सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें UPI सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब UPI को मानने को, रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की, विश्व की जब कार्ड कंपनीज हैं वो सब UPI इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती है। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया, फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए। तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना चाहिए,
1: जी
0: ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर लेके उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे UPI के एक्सपेंशन।
1: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
0: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप UPI देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 रूपये से चालू किया था, आप 1 लाख रूपये तक UPI से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस, एप्लीकेशन का रिट्रीव एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है।
1: बिल्कुल
0: आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा।

0: कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
1: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है, और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड, बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
0: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फाइनेंस दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया, ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर, जहां R&D डिजाइन यही होते हैं, आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM आर्म ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी, सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIC बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। जी, जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा AI की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और AI के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें AI टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसे दूसरे और एप्लीकेशन करने हैं। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास AI की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और AI कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, भारत, चीन और अमेरिका। इन 3 देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी IT कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया AI के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। AI क्वांटम मिशन पे आइए, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपको वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करे। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त

0: इक्कीसवें पायदान पे हैं और
1: बिल्कुल
0: 2015 में 81 में थे। अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38 में हो गया। अब
1: ओ
0: अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो यूएन यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए। जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कड़ी में रात के 10 बजा दिए हैं और वक्त हो चला है ऐसे सफर पर निकलने का जो आपके दिल को सुकून और जहन को ताजगी से भर दें। जी हां दोस्तों, मैं हूं आज आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान और लेकर उपस्थित हूं आपका सुरीला एवं आपके दिनों के बेहद करीब कार्यक्रम मन भवन, जो कि आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित है। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे इसके नाम से ही साफ है, जो मन को भा जाए, जो इस शांत रात में आपके चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान ले आए। आज की इसी महफिल में आपके लिए चुनकर लाए कुछ ऐसी यादें और कुछ ऐसे नगमे जो आपको रात को बेहद हसीन बना देगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया से ये गीत। गीत असद भोपाली का है, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं मलोट के पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर साहू और रमेश मिगलानी ने। मोहल्ला हवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदारानी, अयान, हिना कौसर, शबाना नाज ने। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से श्रीमती प्रमिला श्यामकुंवर और श्रीमती अनुश्री श्यामकुंवर ने और अशोक श्यामकुंवर और दीपक श्यामकुंवर ने यह पत्र हम तक पहुंचाया है। ग्राम चहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। रेलवे कॉलोनी बटंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। यह अगला जो पत्र है यह है महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, नवासा अरहान बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अभिहा नाज, शाजिया शाही नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख ने। कोकिलावारा ओरई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख, नुजहत जहां नाज और मोहम्मद अमजद शेख ने। बौटसारा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू ने। और पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, सुनक कुमारी, सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और मास्टर अंशल नागदेव ने। और कुछ ईमेल भी हमें प्राप्त हो रहे हैं वो जिस प्रकार है। यह पहला जो ईमेल हमें प्राप्त हुआ है वह है लगान पडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल का। यह ईमेल जो प्राप्त हुआ है यह है ऊंचे गांव नादेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिवे पाटिल, सहारनपुर से राधा नामदेव।

अर्पण नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्ष शर्मा का। शिवाजी चौक कटनी से ये पत्र हमें, ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दीपक वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू सेना, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा का। अगला पत्र है पोटिया कुलदुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का। और एक पत्र हमें और भी ईमेल प्राप्त हुआ है, यह है ग्राम खकल विकासखंड नदी गांव जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और एवं समस्त परिवार का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शक्ति फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का है। और इस गीत को सुनना चाहा है, पहले चिट्ठियों के माध्यम से सुन लेते हैं कि किस किस ने इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं। इसके बाद ढेरों ईमेल हमारे पास आ रहे हैं और फिर इनके पास हम पढ़ेंगे ईमेल्स। पहला पत्र है ग्राम फांसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, हांसी शहर मिगलानी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बबू ने बुलडाड़ा इस्मालपुर महाराष्ट्र से सहदेव, शशिकला कुमारी, साधना, सुमित कुमार दामोदर ने कवर कॉलोनी बड़बा से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, श्रीमाली, शिवानी, मीनूराज, मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने मोरखेड़ पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाहरा, दीपक सिंह पवार, दीक्षा कुश ने यादव मोहल्ला संवाद मध्यप्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीत मालाकार और मुस्कान मालाकार ने नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आर एस वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख ने कोआत बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमेरा नाज, अभिहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू का एरोड्रोम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्यप्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग रघु चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे का। और अब हम पढ़ते हैं ईमेल। पहला

जो हमें मिला है वह है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का। अगला ईमेल है कलानौर से नरेन शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद का। बहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। मलियान सरधान मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवन जीवीएम जैन। सरधाना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन का। अगला ईमेल है धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का। हमारे पास बहुत सारे ईमेल लगातार भर भर के आ रहे हैं और कई ईमेल तो लगातार एक जैसे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निर्मला, विशाल, मलकानपुर महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, नारायण इगले, आशीष मोहिलकर का ये ईमेल है। अगला ईमेल है मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब रामचबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा सविश्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी का। जैसे कि एक पहले ईमेल पढ़ चुके थे, फिर से वही ईमेल आ गया है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से यह जो पत्र है, ईमेल है, यह मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। रानी तलैया छतरपुर मध्य प्रदेश से यह जो ईमेल हमें प्राप्त हुआ है वह असरार अहमद खान, साजिदा परवीन, खुदाजा खातून, आफिया परवीन और अरहम बेग का, अलीशा बेग का और अब्राहम अहमद का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

आज के मन भवन कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में आनंद वृक्ष के लिखा गीत। धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन ने, और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र और ईमेल पहुंचाए हैं। सबसे पहले इस बार ईमेल पढ़ लेते हैं। पहला ईमेल है हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, अरफान खान और जिशान खान का। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्टो, रोजी डिकास्टो, पर्ल डिकास्टो और विलिस डिकास्टो का। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन का। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजो, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले। कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली का। अगला ईमेल है गांव टोरावाल नवाहंशर पंजाब से गगनदीप, त्रिशला कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणिका। अगला ईमेल है पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर

तेजस्वी सीता और गीता का। ये अगला ईमेल है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले का। और लगातार ईमेल बहुत सारे आते जा रहे हैं हमारे पास। ये है मल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और कोटना जैन का। ग्राम लसूड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी का। पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री देवांगन का। और कुछ पत्र भी हमारे पास हैं। जो पहला पत्र है वह है ग्राम खड़ीचरा जिला अशोकनगर से आशाराम, हरिओम, सचिन, रवि, रागनी, रोशनी, शुभ, सौरभ, गणेश, रोहन एवं समस्त रजक परिवार का। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेले जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनरत रैकवार, हल्ले, लल्लू और ऋषि रैकवार का। पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह मध्य प्रदेश से ये जो पत्र है वह प्रदीप ताम्रकार, श्रीमती राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार, पारस ताम्रकार, अनंत ताम्रकार एवं समस्त ताम्रकार परिवार का। आदर्श रेडियो श्रोता संघ ग्राम मृतला महोबा से रामजीवन राजपूत, रामिलन भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत राजपूत का। और ये अगला ईमेल है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद का। अगला पत्र है ये कहां से है, यह है गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जौधले और आरती जौधले का। ये पत्र है ग्राम पोस्ट सौजना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से घनश्याम दास रजक, काली चरण रजक, रामजी रजक, संदेश रजक और संदीप रजक परिवार का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पत्रों आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी तो का कार्यक्रम मन भावन क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म हीरो से ये गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत के लिए हम तक पत्र पहुंचाए और इस गीत को सुनना चाहा है। सबसे पहले हम ईमेल तो पढ़ते ही हैं, पिछली बार ईमेल पढ़े थे, इस बार पत्र पढ़ लेते हैं। और ईमेल वाले भेजने वाले श्रोताओं से यह निवेदन है कि जो आप ईमेल भेज रहे हैं वो एक ही भेजें, लगातार आप अपने नाम की ईमेल भेजेंगे तो हमें दूसरे साथियों का दूसरे श्रोताओं का ईमेल पढ़ने में काफी समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पत्र से। अब बात आती है, यह है पत्र नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर मध्य प्रदेश से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, नारायण दास कुशवाहा, इंदु देवी, भागीरथ कुशवाहा, ममता देवी, यश कुशवाहा, राज कुशवाहा और आयुष कुशवाहा का और रक्सी राम का भी। यह पत्र है संभाजीनगर से भाऊ साहब अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, हरीश सेठ, रंजना चंदन का, देवरी भटपारा से गुन्नू लाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का, बरेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर और तनु कर्मकर का, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ का, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है। यह है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश, हार्दिक बत्ता का, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी संवाद मतबे से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौण, मोहम्मद शादाब खत्री का। और अब माफ कीजिएगा, अब रुक कर लेते हैं हमारे ईमेल्स का। तो ईमेल्स में अब ये पत्र जो ईमेल्स हमें प्राप्त हुआ है वह है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन का, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का, यह अगला पत्र है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से।

प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविह नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। यह अगला ईमेल है पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का। यह अगला ईमेल है बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर, आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना, आसमा, राबिया, परी, आशु, जूही, सदफ का और छतरी टोल तेगड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा अफसारी, इस्माइल आजाद, नन्ने राजा, फैजल, फिरोज आलम भाई, शाह आलम और वली आलम जी का। अगला ईमेल है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू सोनकार का। और ये अगला जो ईमेल है वो हमें प्राप्त हुआ है गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थारदी, त्रिप्पा कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, बेबी वमिका और वाणी का। और ये शायद एक बार ईमेल प्राप्त हमें पहले हो चुका था, फिर से उनका नाम भूल चुका है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला ईमेल है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले का। और भी लगातार हमें ईमेल प्राप्त होते चले जा रहे हैं। ये अगला ईमेल है भाटपारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू का। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगेंजा, पूनम गगेंजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरपुर गंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आजाद का। अगला ये पत्र या ईमेल है मैं प्राप्त हुआ है या है ग्राम बुडगहन छत्तीसगढ़ से रामदौलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांत प्रजापति का। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्णपाल सिंह गिल, दिलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह का। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी का। अगला ईमेल है ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल का। गुनौर से ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है अभी आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का। और एक और ईमेल ले लेते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, ओम कुमार और आरती सुरलकर का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जो कि आपके पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र और होस्ट और दोस्त इमरान खान। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पौडवाल, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र और ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। पत्र पहले आ चुके थे और ईमेल्स हमारे पास अभी लाइव आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले पत्र उठा लेते हैं। पहला पत्र है महादेव घाट अमलेश्वर से सोमन डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजाला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर का। ग्राम बड़गोड़वा पथरिया से नरिन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। नेपाल पैलेस सागर से तिलकराना मीनारा नामोनिका अन्नपुर ऋषिका और रॉबिन का। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजीव राजेश और राशी राजेश का। अगला पत्र है प्रेम रेडियो श्रोता संघ ग्राम बनगांव तहसील पटेरा जिला दमोह से प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज यादव, सुषमा यादव, संगीता यादव, गीता यादव, कविता यादव और गोविंद यादव का। जिला रायसेन खापड़ खेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती ममता और गुमदी का। ग्राम बड़भूजी जिला आगर मध्यप्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्यामबाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश का। अगला पत्र है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामलेर, रेखा कामलेर, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले का। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से यह पत्र हमें मिला है अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम भाई हरिशास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय एवं कार्तिक तिवारी और समस्त तिवारी परिवार का। यह अगला पत्र है कोरोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान का। ये तो थे पत्र, अब बात कर लेते हैं ईमेल्स की। ईमेल्स में लाइव अभी हमारे पास ईमेल आया है, यह है कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और तहरिया का। ऊपर कोट बुलंदशहर से यह ईमेल

अगला है मोहम्मद अब्बासी का, भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से श्री कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता का। ये अभी हमें लाइव ईमेल प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी हमें जिनके नाम बोल चुके हैं वो भी अभी हमें अपने ईमेल पहुंचा रहे हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ईमेल आ चुके हैं और भी हम लोग ईमेल देख रहे हैं कि कौन से हमारे श्रोता मित्रों का ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है या जिनका नाम नहीं बोला है। यह अगला एक ईमेल है, यह है गुमला झारखंड से एसएम जावेद का, शगुफ्ता और अंजुम का। तो गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी जी का बोल ही चुके हैं और आप हमें ईमेल भेजते रहिए, अभी भी कार्यक्रम जारी है। और तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

तो कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म सौदागर से ये गीत। आवाज है मनोहर दास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। उस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। कटघोरा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल सिंह, श्रीमती शकुंतला, मनोज पाल सिंह, लखन पाल सिंह, दिनेश पाल सिंह, कुमारी कविता। बेमित्रा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और श्रद्धा साहू का। मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है। अगला पत्र है आदेश नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का। और ग्राम कटकाह जिला पन्ना से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत सेन, नेहा, अमवेश, कृष्णा, प्रियांशी सेन का। राजपूत कृषि फॉर्म ग्राम मिर्तला जिला महोबा से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, नीरेंद्र सिंह, गुरु महाराज, गौरव सिंह और जानवी राजपूत का। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी, करूला मुरादाबाद से मेराज अंसारी और वसीम अंसारी का। ग्राम खजरी तहसील परेरा जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से राजेंद्र कुमार अहिरवार, अजय, उमेश, सुनील, दिनेश, जितेंद्र, आकाश, अनिल, रामलाल, रोशन, राजकुमारी, शगुन, श्रीमती शीला देवी और संपूर्ण परिवार का। ग्राम पजौनिया तहसील कौच जिला जालौन से सत्येन चंसोलिया जी का। तो जल्दी से एक आध ईमेल और ले लेते हैं। यह है जालंधर सिटी पंजाब से सोनू, रवि, राज, गुलशन और लकी का। अगला ईमेल है ग्राम परवाड़ी जिला महोबर उत्तर प्रदेश से देवी दीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कुमार, कपिल, पूजा वर्मा का। ग्राम मामना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और इसी गीत के साथ ही आज का हमारा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए आपके अपने मित्र इमरान खान को, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मन भवन कार्यक्रम, जो कि आपके पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम था। मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार कुछ बलोबाज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्षभर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने